ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज़ पर। आज सोमवार हैं, सक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून 2026 सुबह के 5:57 हो रहे हैं। आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है, जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा।

0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4वां वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस।

भगवान शंकर के विवाह का वर्णन स्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में किया है। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, देवताओं ने हर्ष ध्वनि की, श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सर्वत्र आनंद छा गया। विदा के समय जामाता को अनेक उपहार देकर हिमाचल ने हाथ जोड़े, हे शिव, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। हिमाचल पत्नी मैना ने विनती की, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, आप इसके सभी अपराध क्षमा कीजिएगा। और बेटी के लिए मां के वचन थे, हे पार्वती, तुम सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। तत्पश्चात शिव पार्वती कैलाश पर्वत के लिए विदा हुए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस, जिसमें स्वर था शोभा जोशी का और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम व्यू 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। सुविचार।

क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पात्र में रखा जाता है उसे ही सबसे पहले नष्ट करता है। इसलिए अपने अंदर क्रोध को कभी ना आने दे। इस सुविचार के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में ये पहला गीत हकीकत फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और चौरस ने, लिखा है इन्विंदर ने और संगीतबद्ध किया है बप्पी लहरी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अभी तो जी ले, इस फिल्म का ये गीत जिसे गाया था किशोर कुमार और आशा भोसले ने, लिखा था इन्विंदर ने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मिली फिल्म से ये गीत, जिसे गाया था लता ने, लता मंगेशकर ने, और लिखा था योगेश ने, संगीतबद्ध किया था एसडी बर्मन ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

नमस्कार दोस्तों, हम हर रोज़ हज़ारों शब्द बोलते हैं। क्या हाल है, मैं ठीक हूँ, कल मिलते हैं, फिर कभी बात करेंगे, लेकिन एक शब्द हम अक्सर किसी से नहीं कहते। वो शब्द सिर्फ दिल के भीतर ही समाता है और वो शब्द है काश। काश जो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। ये शब्द सिर्फ दो अक्षर का है, पर कभी एक पूरी कहानी होता है। इस काश के पीछे कभी एक अधूरा रिश्ता, कभी एक छूटा हुआ सपना, और कभी एक ऐसा पल जो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। श्रोताओं, तब दिल बस इतना ही कहता है, काश। लेकिन दोस्तों, आज का हमारा सफ़र पछतावे का सफ़र नहीं है। ये उस मौके को पहचानने का सफ़र है जो हमें आज भी बेहतर इंसान बना सकता है, क्योंकि कल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज को ज़रूर जिया जा सकता है। और शायद आज का एक फैसला कल के किसी काश को जन्म लेने से रोक सकता है। तो अगले एक घंटे तक हम बात करेंगे उन लम्हों की, उन रिश्तों की, उन सपनों की और उन खामोशियों की जो कभी एक हर इंसान के दिल में बस एक ही शब्द बनकर उभरती है, काश। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो हमें याद दिलाता है कि वक्त कभी नहीं रुकता।

दोस्तों, आज की दुनिया में हर चीज़ फास्ट हो गई है। फास्ट इंटरनेट, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ। लेकिन एक चीज़ धीरे धीरे हमसे दूर होती जा रही है, और वो है अपने लोगों के साथ बिताया हुआ वक्त। हम अक्सर कहते हैं, अभी बिजी हूँ, कल बात करते हैं, वीकेंड पर मिलेंगे, रिटायरमेंट के बाद सब कर लेंगे। लेकिन ज़िंदगी तारीख के ये साल देखकर नहीं चलती। कभी कभी एक दिन ही सब कुछ बदल डालता है। फिर बस दिल में एक ही आवाज़ रह जाती है, काश काश उस दिन थोड़ी देर और बैठ गया होता।

काश पापा की बात ध्यान से सुन ली होती। काश माँ के साथ चाय पी ली होती। काश दोस्त का फोन रिसीव कर लिया होता। दोस्तों, पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं, मौके दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग दोबारा कभी नहीं मिलते। और जब ये बात समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए याद रहे, जो बीत गया उसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो बाकी है उसे आज भी खूबसूरत बनाया जा सकता है।

दोस्तों, रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन गलती नहीं होती, गलत फहमी भी नहीं होती। सबसे बड़ी दुश्मन होती है ईगो। वही ईगो जो कहता है पहले वो फ़ोन कर ले, पहले वो सॉरी बोले, मुझे क्या ज़रूरत है। और देखते ही देखते दो लोग जो कभी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, एक दूसरे की खबर तक लेना छोड़ देते हैं। सोचिए कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट गए क्योंकि दोनों सही बनना चाहते थे, लेकिन किसी ने भी रिश्ता बचाना नहीं चाहा। और ऐसे में वो सब चीज़ें, वो सब बातें सुन ली जाती है जो दूसरा कहता भी नहीं है।

दोस्तों, एक सॉरी इंसान को छोटा नहीं बनाता, और एक तुम कैसे हो किसी के दिल का बोझ हल्का कर देता है। याद रखिए, जब जिंदगी पीछे मुड़कर देखेगी तो ये याद नहीं रहेगा कि बहस में कौन जीता था। याद सिर्फ ये रहेगा कि रिश्ता बच गया था या खो गया था। अगर आज भी कोई ऐसा इंसान है जिससे बात हुए महीने या सालों बीत गए हैं और सिर्फ ईगो बीच में खड़ा है, तो शायद आज ही उस दीवार पर पहला हथौड़ा मारने का दिन है। क्योंकि कभी कभी एक मैसेज लिखने में सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं और उस मैसेज का सुकून 30 सालों तक साथ रहता है। तो दोस्तों, कर डालिए एक फ़ोन, बोल दीजिए सॉरी, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो आपके रिश्ते को बचा सकता है।

दोस्तों, ज़िंदगी की सबसे अजीब बात जानते हैं? बचपन में हम बड़े होने का इंतज़ार करते हैं और बड़े होकर अपने बचपन के सपनों को टलते हैं। कभी कहते हैं, अभी समय नहीं है, जिम्मेदारियां पूरी हो जाए फिर, थोड़ा और पैसा कमा लें फिर, बच्चे बड़े हो जाएं फिर, और ये फिर कभी आता ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कितनी किताबें हैं जो लिखी ही नहीं गई, कितने गीत हैं जो गाए ही नहीं गए, कितनी पेंटिंग्स हैं जो कैनवास पर पहुंच ही नहीं पाई, कितने लोग हैं जो पूरी जिंदगी दूसरों के सपने पूरे करते हैं लेकिन अपने सपनों से नजर चुराते हैं। दोस्तों, सपने सिर्फ मंजिल नहीं बताते, वे हमें ये भी बताते हैं कि हम कौन हैं। हर सपना पूरा हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हर सपना जीने की कोशिश भी नहीं हो ये गलत है, क्योंकि किसी दिन जब हम पीछे मुड़कर देखें तो दिल ये ना कहे कि काश एक बार कोशिश तो की होती। अगर आपके मन में भी कोई सपना अब तक जिंदा है तो शायद उसे शुरू करने का सबसे अच्छा दिन आज ही है।

दोस्तों, हम सब किसी न किसी की फिक्र करते हैं। माँ बच्चों की, बच्चे माता पिता की, पति पत्नी एक दूसरे की, दोस्त दोस्तों की। लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जिसे हम अक्सर सबसे आखिरी में रखते हैं, और वो है हम खुद। हम कहते हैं, पहले ये काम पूरा कर लूँ, पहले सबकी जिम्मेदारी निभा लूँ, मेरे लिए तो बाद में भी समय मिल जाएगा। लेकिन ये शरीर भी तो एक दिन कहता है, भाई अब मेरी भी सुन लो। दोस्तों, सेहत सिर्फ बीमारी न होने का नाम नहीं है। थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ी सी सैर, थोड़ा सा अपने लिए समय, ये भी सेहत ही है। याद रखिए, अगर दीपक ही बुझ जाएगा तो रोशनी कैसे देगा। इसलिए खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। आज अगर 5 मिनट अपने लिए निकाल लिए तो हो सकता है कल कोई काश कहने की ज़रूरत ही न पड़े।

दोस्तों, हर बात कहना ज़रूरी नहीं होता, ये सच है, लेकिन हर बात दबा देना भी ठीक नहीं होता। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, थैंक यू बोलना चाहते हैं, मुझे तुम पर गर्व है ये भी कहना चाहते हैं, मुझे तुम्हारी याद आती है, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, ये भी हम किसी से कह नहीं पाते, या सिर्फ इतना कि तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हो। लेकिन हम सोचते रहते हैं, कभी कहते नहीं, और वही कभी कभी हमारी लाइफ में आता ही नहीं।

दोस्तों, दिल की बातें अजीब होती है। जब तक वो अंदर रहती है, बोझ बन जाती है, और जब बाहर आ जाती है तो या तो रिश्ता और गहरा हो जाता है या फिर दिल हल्का हो जाता है। दोनों ही सूरत में इंसान जीत जाता है। दोस्तों, आज अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई अच्छा या प्यारा सा एहसास है तो उसे रोक कर मत रखिए। किसी की तारीफ करनी हो कर दीजिए, किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो कर दीजिए, किसी से माफ़ी मांगनी हो तो मांग दीजिए। क्योंकि न जाने किस मुलाकात के बाद जिंदगी फिर मौका दे या ना दे, तो छुपाइए नहीं, कह दीजिए अपने मन की बात।

दोस्तों, सबसे भारी बोझ किसी और की गलती का नहीं होता, वो बोझ होता है हमारे अपने दिल का।

हम सालों तक किसी से नाराज़ रहते हैं और धीरे धीरे वो इंसान तो अपनी ज़िंदगी जीने लगता है, लेकिन हम उसे उस गुस्से को अपने अंदर संभाले रहते हैं और सिर्फ दूसरों को ही नहीं, हम खुद को भी माफ़ नहीं कर पाते। मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। काश काश मैं उस दिन ऐसा बोल देता। ये मलाल हमेशा रह जाता। दोस्तों, गलतियाँ इंसान होने का सबूत है और उनसे सीख लेना इंसानियत की खूबसूरती। माफ़ कर देना गलत को सही कहना नहीं होता, माफ़ कर देना खुद को आज़ाद कर देना होता है। और कभी कभी सबसे ज़रूरी माफ़ी खुद को ही देनी पड़ती है। आज अगर दिल में कोई पुरानी बात छुपती है तो उसे पकड़ कर मत बैठिए। लंबी सांस लेकर उसे धीरे से हवा में छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हाथ पुरानी तकलीफ को पकड़ कर रखता है वो नए सुख को पकड़ ही नहीं पाता। इसलिए हर फिक्र को धुएं में उड़ाते चलो।

दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई काश है तो उसे अपने दिल में हमेशा के लिए मत रहने दीजिए। अगर किसी से माफ़ी मांगनी है, आज मांग लीजिए। अगर किसी से प्यार का इजहार करना है तो आज कर लीजिए। अगर माँ बाप को गले लगाना है तो आज लगा लीजिए। अगर कोई सपना अभी भी ज़िंदा है तो आज पहला कदम उठा लीजिए, क्योंकि हर काश की शुरुआत एक टाले हुए आज से होती है। इसलिए कल का इंतज़ार मत कीजिए, ताकि आने वाले वर्षों में आपको ये ना कहना पड़े, काश।

है तो आज लगा लीजिए, अगर कोई सपना अभी भी जिंदा है तो आज पहला कदम उठा लीजिए, क्योंकि हर काश की शुरुआत एक टाले हुए आज से होती है। इसलिए कल का इंतज़ार मत कीजिए, ताकि आने वाले वर्षों में आपको ये ना कहना पड़े काश।

どうしたん？कोशिश कीजिए कि आज के बाद आपकी ज़िंदगी में काश थोड़े कम हो जाए और शुक्रिया अच्छा हुआ और मैं कर लूँगा ये लफ्ज़ थोड़े ज़्यादा हो जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ आपकी रेडियो तो जय श्री। फिर मिलेंगे कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम में किसी और अंक में। तब तक अपनों को वक्त दीजिए, दिल की बात कहिए और हर दिन को इस तरह जिए कि कल मुड़कर देखना पड़े तो सिर्फ मुस्कान आए, काश नहीं।

सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम व्यू 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले हिंदी तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर रेणु भट्ट के साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर। और जब ये गाना चलता है ना, हर बार मैं ये कहती हूँ कि इस गाने के आखिरी साउंड तक इसको मैं पूरा सुनती हूँ। जब ये ट्रेन से जो आवाज़ आती है ना, भाप इंजन की, और पूरा देखना भी अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव है। और इसको सुनना, इसके साउंड को इमेजिन करना और सुनना, महसूस करना भी एक अपने आप में मज़ा है। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है ट्रेन में, लेकिन बहुत लोग हैं जो बहुत ट्रैवल करते हैं ट्रेन में। जब भी कहीं जाना होता है किसी को कहीं पर, तो ट्रेन एक बहुत बहुत अच्छा जरिया है यात्रा को कंप्लीट करने का। अच्छा, कई लोगों की कई कहानियाँ हैं रेल के साथ। कई लोगों की कहानी इस वजह से भी होंगी कि वो ट्रेन में नहीं बैठे हैं, वो एक बार ट्रेन में बैठना चाहते हैं। कई लोगों की कहानियाँ इस वजह से है कि वो ट्रेन में बहुत बैठे हैं, बहुत तरह के लोगों से मिले हैं। तो सबके अपने मज़े हैं। जितने भी आप ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स देखेंगे ना, सबका अपना अपना मज़ा है और आनंद आता है। जिसको भी आप ट्रैवल करें, चाहे आप रोड ट्रैवल करें, या फिर आप ट्रेन से करें, या फिर आप एयर से करें। अभी फ़िलहाल आप सभी के लेकर बेहद खूबसूरत ट्रैक में लेकर आई हूँ कार्तिक के आवाज़ में, गजनी फिल्म से। आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में ढेर सारी बातें मेरे पास हमेशा की तरह आप सभी को अपडेट करने के लिए।

0: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317 और 0112314444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिन्दुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अलनीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का

0: Beach Pro League campaign on a winning note. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है हमारा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार।

नए दिन की नई सुबह का नया नया अंदाज, सारे दिन की झोली में छुपे हुए हैं कुछ राज। तुमको मुझको हर किसी को मिलना है कुछ आज, तो आओ दोस्तों खुशी खुशी करें इस नए दिन का आगाज। जी हाँ दोस्तों, इसी सकारात्मक संदेश के साथ और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं का आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर।

0: जी दोस्तों, बिल्कुल समय हो गया है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार का, जिसमें हम आपको रूबरू करवाएंगे कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ। और इसके साथ ही रखेंगे आपको अपडेट, लेकिन उससे पहले हो जाए टीम का परिचय जो निर्बाध रूप से आप तक सभी प्रोग्राम्स पहुंचाती है। जी दोस्तों, ट्रांसमीटर पर हमारे साथ हैं नरेंद्र सिंह राठौड़ और प्रकाश पवार। कंट्रोल रूम से हमारा साथ दे रहे हैं विक्रम सिंह भाटी। कंसोल पर हमारा साथ दे रही है जयश्री। और एफएम से हमारे साथ है रेखा भाटिया। कार्यक्रम के सहयोग एवं प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश लामरोड़। और आपके आज के हम दो होस्ट, मैं हूं मनीषा जोशी बोहरा और मेरे साथ हैं
1: हेमलता। तो करते हैं एक बार पुनः हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत। आज करेंगे आपके साथ कई सारी जानकारियां साझा, मगर उससे पहले नया दिन, नई शुरुआत और ये प्यारा सा गीत।

आ जा रे या बरखा, कब से नहीं देखा। बिल्कुल दोस्तों, हमारे शहर का भी हाल कुछ ऐसा ही हो रहा है कि बरखा जो है वो बरसने का नाम नहीं ले रही है और मन उसे देखने के लिए काफ़ी बेताब है और तरस रहा है। लेकिन बरखा तो भाई अपनी मर्जी से आएगी, जब उसका मन होगा, जब माहौल बनेगा, जब मानसून आएगा तभी आएगी। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको दुरुस्त करना, जिनको लाना सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में होता है, जिनको समय रहते ही अगर हम ठीक कर लें तो हम अपने उन सभी रिश्तों को खिलता महकता रख सकते हैं जिन्हें हमारी परवाह है या जो हमारी केयर करते हैं। वरना ये रिश्ते इतने नाजुक होते हैं, इतने महीन होते हैं कि कब हाथ से फिसल जाएं पता ही नहीं चलता।

जी दोस्तों, नए नवेले गीतों के साथ हम आपसे बातें करते हैं, कुछ प्रेरणादायक प्रसंग सुनाते हैं और आज की हमारी कहानी है छोटी सी मोमबत्ती। दोस्तों, एक बार एक गांव में अचानक रात के समय बिजली चली गई, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। लोग घबरा गए और सोचने लगे कि अब क्या करें। तभी एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई गई, उसे देखकर दूसरी मोमबत्तियां भी जलने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरे घर और फिर आसपास के कई घरों में रोशनी फैल गई। एक बच्चे ने अपनी दादी से पूछा कि दादी, इतनी छोटी सी मोमबत्ती ने इतना बड़ा अंधेरा कैसे दूर कर दिया? तो दादी मुस्कुराकर बोली, बेटा, अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे मिटाने के लिए एक छोटी सी रोशनी ही काफ़ी होती है। इसी तरह जीवन में यदि तुम सच्चाई, मेहनत और अच्छे कर्मों की एक छोटी शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे बड़ी सफलता और खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। उस दिन से बच्चे ने ठान लिया कि वह हर दिन एक अच्छा काम जरूर करेगा। समय के साथ उसकी छोटी छोटी अच्छी आदतों ने उसे एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे अच्छे कदमों से शुरू होते हैं। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि आपका प्रयास छोटा है। प्रयास छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बड़े बड़े फैसले और बड़े बड़े खुशियाँ हमारे झोले में डाल सकता है।

जल्दी और देर, हम सपने तो बड़ी जल्दी देखते हैं मगर काम को अंजाम बड़ी देर से देते हैं। हम भरोसा बड़ी जल्दी कर लेते हैं और माफ़ करने में बड़ी देर कर देते हैं। तो हम गुस्सा भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं मगर माफ़ी मांगने में बहुत देर लगाते हैं। हम हार जो है वो बहुत जल्दी मान लेते हैं और शुरुआत करने में बड़ी देर कर देते हैं। और दोस्तों, हम रो तो बहुत जल्दी देते हैं पर मुस्कुराने में बड़ी देर कर देते हैं। हर चीज़ में जल्दी करना हमें छोड़ना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी दोस्तों।

सोचा है कि प्रकृति ने कभी शोर नहीं किया, फिर भी वो सबसे सुंदर लगती है। फूल ने कभी खुद की तारीफ नहीं लिखी, फिर भी लोग उन्हें किताबों में रखते हैं। शायद सुकून हमेशा उन्हीं चीज़ों में होता है जो खुद को साबित करने में नहीं लगी होती हैं। इसलिए अपना समय खुद को साबित करने में मत लगाइए, बस अपने आप को निखारते रहिए और बहते चलिए।

0: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। श्रोताओं सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।
1: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन प्रदेश में 61,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। आज और कल टीमें घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में 276 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गर्मी और पूर्वी इलाकों में उमस से जनजीवन प्रभावित। श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री पार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हारमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हारमनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। यह सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान में बनने वाली रिफाइनरी देश और प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 4 जुलाई को होने वाले प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर कल बालोतरा के पचपदरा रिफाइनरी परिसर और प्रस्तावित जनसभा का दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान की बहुप्रतीक्षित परियोजना से क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
3: पश्चिमी राजस्थान में एक ऐतिहासिक काम होने वाला है, कई वर्षों से जिसका इंतजार कर रहे थे और ये राजस्थान के भाग्य को बदलने वाली हमारी ये रिफाइनरी, हमारे युवाओं को रोजगार देने वाली हमारी ये। आज मैं यहाँ रिफाइनरी में आया हूँ, मैंने यहाँ व्यवस्थाओं का देखा है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, बाड़मेर बालोतरा में रिफाइनरी का उद्घाटन होने जा रहा है जो आपको इंतजार था। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: गौरतलब है कि प्रधानमंत्री 4 जुलाई को देश के ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन प्रदेश में 61,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य के 59,217 बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई गई। ये अभियान आज और कल भी जारी रहेगा। अभियान के तहत राज्य के करीब 1,04,00,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत आज और कल स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाएंगी। इसके लिए 75,000 से अधिक टीमें बनाई गई है जिनमें मोबाइल और

दोस्तों घड़ी में बजने वाले हैं 9। यहाँ पर हम रुकेंगे प्रादेशिक समाचारों के लिए और 9:10 पर नमस्कार कार्यक्रम लेकर पुनः आपसे मुखातिब होंगे।

0: ट्रांजिट टीमें भी शामिल है। ये टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ईंट भट्टों और दुर्गम क्षेत्रों में मुस्तैदी से काम कर रही हैं, ताकि कोई भी बच्चा दवा से वंचित न रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा आज जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जन सहभागिता और उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा होंगे। समारोह की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने वाले 276 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें से 154 भामाशाह, 99 प्रेरक और 23 एनआरआई दानदाता शामिल हैं। इन सहयोगियों द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सुविधाओं के विस्तार के लिए 318 करोड़ रूपये का उल्लेखनीय योगदान दिया गया है। देश भर में आज महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महान लोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम अनब्लॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। प्रदेश में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पाली जिले में सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रशासनिक आंकड़ों के प्रभावी उपयोग पर कृषि विभाग के सभागार में चर्चा आयोजित की जाएगी। वहीं करौली जिले में आंकड़ों के महत्व पर जिला स्तरीय कार्यशाला रखी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सांख्यिकी केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि जिले के विकास की दिशा तय करने का सशक्त माध्यम बन रही है। करौली में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, कृषि, पोषण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग में प्रशासनिक आंकड़ों का उपयोग लगातार बढ़ा है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर योजनाओं की प्राथमिकताएं तय की जा रही है और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है। सांख्यिकी दिवस पर आयोजित होने वाली कार्यशाला में प्रशासनिक आंकड़ों के बेहतर उपयोग के माध्यम से सुशासन और विकास को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष चर्चा होगी। बागेवारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: प्रदेश में इन दिनों मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल बनी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार वर्तमान में मॉनसून गुजरात की उत्तरी सीमा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से होकर गुजर रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम की बात करें तो डबोक में सबसे अधिक 33 मिलीमीटर, प्रतापगढ़ में 10 और पिलानी में 7.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान का श्रीगंगानगर 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा बीकानेर में 43.2 और जैसलमेर में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया। आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान जोधपुर और बीकानेर संभागों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। वहीं अगले 3 से 4 दिनों में कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया के सेशल्स में कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन प्रदेश में 61,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। आज और कल टीमें घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में 276 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गर्मी और पूर्वी इलाकों में उमस से जनजीवन प्रभावित। श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री पार।

0: इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: दोस्तों स्वागत है आपका फिर से न्यूज ब्रेक के बाद मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। दोस्तों आपके आज के हम होस्ट हैं, मैं हूं मनीषा जोशी बरा और मेरे साथ हैं
2: हेमलता।
1: और जिस दोस्तों प्रोग्राम में वक्त हो चला है आज के इतिहास का, तो आपको रूबरू करवाते हैं कि आज के दिन में क्या क्या खास हुआ।
2: दोस्तों आज ही के दिन 1974 में इसाबेल पेरिन ने अर्जेंटीना की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी।
1: दोस्तों 1975 में आज ही के दिन स्टीव वोजनियाक ने एप्पल वन कंप्यूटर के पहले प्रोटोटाइप का परीक्षण किया था।
2: 1952 का वो दिन था जब पहली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजित हुई थी और फिनलैंड की आर्मी कुसेला ने ये खिताब जीता था आज ही के दिन।
1: दोस्तों 1976 में आज ही का दिन था सेशल्स को इंग्लैंड से स्वतंत्रता मिली थी।
2: और 29 जून 1986 को अर्जेंटीना ने फुटबॉल विश्व कप जीता था 1986 का।
1: दोस्तों 2024 में आज ही का दिन था भारतीय टीम ने T20 विश्व कप जीता था और हमारे देश को गौरवान्वित महसूस कराया था।

0: दोस्तों, आज है 29 जून का दिन। इस दिन को हर साल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का वैश्विक दिन मनाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय दिन प्रतिवर्ष कई उद्देश्यों को लेकर मनाया जाता है दोस्तों, जैसे सतत विकास, लक्ष्यों को प्राप्त करने में उष्णकटिबंधीय देशों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना और रेखांकित करना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सामने आने वाली जो विशेष चुनौतियां हैं और विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के दूरगामी प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 29 जून 2017 को मनाया गया था। 29 जून 2014 को 12 प्रमुख उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से तैयार की गई पहली स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट का शुभारंभ किया गया था। यह रिपोर्ट इस तेजी से महत्वपूर्ण होते क्षेत्र पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है दोस्तों। दूसरी स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट 2020 में जारी की गई। रिपोर्ट के शुभारंभ की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में संकल्प को अपनाया, जिसमें यह घोषणा की गई कि हर साल 29 जून को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी का वह क्षेत्र है जिसे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है या जाना जाता है। हालांकि स्थलाकृति और अन्य कारक जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं।
1: दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं आमतौर पर गर्म होते हैं और यहाँ दैनिक तापमान में मौसमी बदलाव बहुत कम होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण विशेषता भूमध्य रेखा के निकट नम आंतरिक क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता होती है और भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ने के साथ वर्षा की मौसमी प्रकृति भी बढ़ती जाती है। दोस्तों, ये जो क्षेत्र होते हैं वो विश्व के कुल भूभाग में लगभग 40% जो भाग है उसमें और इसमें विश्व की लगभग 80% जैव विविधता तथा भाषा और सांस्कृतिक विविधता का भंडार मौजूद है और हाल के दशकों में जनसंख्या वृद्धि के कारण आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण से प्रेरित होकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, लकड़ी की अंधाधुंध कटाई, शहरीकरण और जनसांख्यिकी परिवर्तन जैसे कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की असाधारण विविधता का जश्न मनाता है। साथ ही उष्णकटिबंधीय देशों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश भी डालता है और यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लेने, उष्णकटिबंधीय कहानियों और विशेषज्ञता को साझा करने और इस जो इस क्षेत्र की विविधता है और क्षमता है उसे पहचानने का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी के ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनके संरक्षण और सतत विकास के बिना वैश्विक पर्यावरण संतुलन बनाए रखना कठिन होगा।

ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बिल्कुल दोस्तों, आज कबीरदास जी को हम याद करेंगे, और कौन नहीं?

0: जानता उन्हें, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में बातें करेंगे और कुछ बातें आपको बताएंगे।
1: जी हाँ दोस्तों, जिंदगी के जो कालजयी रचनाएं हैं जो कबीरदास जी कर गए हैं, और आज सब उन्हीं की लकीर को पीटते जाते हैं, और जीवन की वो सच्चाइयाँ, वो दृष्टिकोण जो उन्होंने उस वक्त रखा था, आज भी कहीं ना कहीं जीवन में हमें एकदम सटीक लागू होता है सबके जीवन पे। वो ये कह गए थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करे गो कब। उन्होंने तब लिखी, मगर इनकी प्रासंगिकता आज भी हमें ज्यादा प्रतीत होती है दोस्तों। आज के दौर में वाकई एक पल का भी पता नहीं चलता, तो कल पर तो आप कैसे भरोसा कर सकते हैं। जीवन के सार से भरा उनका सृजन संसार आज भी हमारा पथ जो है वो प्रशस्त कर रहा है दोस्तों। आज हम उनको स्मरण कर रहे हैं, महान संत, समाज सुधारक, कवि और विचारक कबीरदास जी को उनकी जयंती पर। कबीरदास जी भारतीय संत परंपरा के ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जिनकी वाणी आज भी समाज को सत्य, प्रेम और मानवता का संदेश देती है। उनका जन्म 15वीं शताब्दी में माना जाता है दोस्तों। कबीर ने अपने दोहों और साखियों के माध्यम से समाज में फैली रूढ़ियों, अंधविश्वासों और भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने धर्म के बाहरी आडंबरों से ऊपर उठकर ईश्वर की सच्ची भक्ति और मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मोह, भया न पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का बड़े सुपंडित होए। ये दोहा हमें सिखाता है कि केवल किताबी ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रेम और मानवीय संवेदनाएं ही जीवन का वास्तविक ज्ञान है।
0: जी दोस्तों, कबीर की वाणी में सरलता है, लेकिन उनके विचार अत्यंत गहरे हैं। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया, और यही कारण है कि सदियों के बाद भी उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। कबीरदास जी जयंती पर हमें यह अवसर देती है कि हम उनके संदेशों को अपने जीवन में उतारें, जाति, धर्म और भाषा के भेद से ऊपर उठकर मानवता को अपनाएं और प्रेम, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलें। दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ हम संत कबीर को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।

0: दोस्तों, आज का दिन यानी कि 29 जून का दिन हमारे देश के लिए भी का खासा महत्व रखता है। आज के दिन हमारे देश में मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। यह दिन महान सांख्यविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2007 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने भारत में सांख्यिकी के विकास और आर्थिक नियोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा विकसित महालनोबिस मॉडल और महालनोबिस दूरी आज भी सांख्यिकी और डेटा विश्लेषण के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी मानी जाती है, और आज के दिन उनका जन्मदिन भी होता है, तो उसी अवसर पर आज का दिन घोषित किया गया।
1: दोस्तों, सांख्यिकी का महत्व यही है कि सरकारी नीतियों और योजनाओं के निर्माण में इसे रेखांकित किया जाता है। जनगणना, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण में भी ये रेखांकित होता है। आर्थिक विकास और शोध कार्यों में, व्यापार और उद्योग में निर्णय लेने के लिए। और दोस्तों, इसी के साथ ये जो दिवस मनाने का उद्देश्य रहता है, ये यही रहता है कि आंकड़ों के सही उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना, युवाओं को सांख्यिकी विषय के प्रति प्रेरित करना, विकास और योजनाओं में डेटा आधारित निर्णयों को बढ़ावा देना और शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करना। दोस्तों, ये दिवस हमें यह बताता है कि सही आंकड़े और उनका वैज्ञानिक विश्लेषण देश के विकास की नींव को मजबूत करता है। और आंकड़े जो होते हैं वो केवल संख्याएं नहीं होती है, वे देश की प्रगति की कहानी कहते हैं। आइए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर जानें कि किस प्रकार सांख्यिकी हमारे जीवन और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और हमें कैसे इसकी तरफ हमें प्रेरित होना चाहिए, युवाओं को इसकी तरफ प्रेरित करना चाहिए, और हमें देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए।

0: दोस्तों, आज है सोमवार और सोमवार के दिन हमारा विशेष सेगमेंट रहता है विज्ञान विश्व। और आज अपने इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ क्या है, जिसे दुर्लभ तत्व भी कहा जाता है। आज की डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था में रेयर अर्थ तत्वों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और नवीनीकरणीय ऊर्जा तकनीकों के लिए ये अत्यंत आवश्यक तत्व है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, लड़ाकू विमान और डिजिटल कैमरे, इन सब चीजों में एक चीज समान है, दुर्लभ तत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इस समय दुनिया के लगभग 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स केवल चीन में खोद कर निकाले जाते हैं। दोस्तों, असल में ये जो तत्व है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन असल चुनौती है इसे इलाकों इन ऐसे जो इलाके हैं उनकी तलाश करना जहाँ ये अधिक मात्रा में हो और वहाँ उसकी खुदाई आर्थिक रूप से फायदेमंद हो। इन दुर्लभ तत्वों की मांग तो हर जगह है, लेकिन ये केवल कुछ ही देशों में पाए जाते हैं। दुर्लभ तत्व या रेयर अर्थ एलिमेंट 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह है जो आधुनिक तकनीक का एक छोटा लेकिन बहुत अहम और ज़रूरी हिस्सा है। स्मार्टफोन से लेकर पतली स्क्रीन वाले टीवी, डिजिटल कैमरे और एलईडी लाइट भी इन पर निर्भर करते हैं, लेकिन इसका सबसे अहम इस्तेमाल स्थायी चुंबक बनाने में होता है।
1: जी दोस्तों, और ये चुंबक कई दशकों तक अपनी चुंबकीय शक्ति बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी शक्तिशाली होते हैं और इन्हें कितना भी छोटा या हल्का बनाया जा सकता है। इसलिए ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर विंड टर्बाइनों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल केवल यहीं तक सीमित नहीं है, रक्षा तकनीक में जैसे कि लड़ाकू विमान और पनडुब्बियों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होते हैं। वाणिज्य और रक्षा क्षेत्र में इनकी रणनीतिक अहमियत के कारण ही ये इतने कीमती होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखें तो नियो डीमियम और प्रासो डीमियम, जो स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे ज़रूरी दुर्लभ तत्व हैं, इनकी जो कीमत करीब लगभग 55 यूरो प्रति किलो आती है, जबकि 1 किलो टर्बियम की कीमत लगभग 850 यूरो तक चली जाती है। दोस्तों, अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के लगभग 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चीन में खनन किए जाते हैं, जिसमें से अधिकतर चीन के उत्तर में स्थित बायन ओबी नाम की खान है, वहाँ से आते हैं। और ये खान दुनिया के किसी भी दूसरे बड़े भंडार से कई गुना बड़ी है। बायन ओबी खान में चुंबक बनाने में इस्तेमाल होने वाली सभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का पर्याप्त मात्रा में मौजूदगी है।
0: और खनन के बाद इन तत्वों को अलग करने और उपयोगी रूप में बदलने के लिए इन्हें एक खास प्रक्रिया से गुजारा जाता है दोस्तों, जिसे रिफाइनिंग कहा जाता है। और यह काम भी मुख्य रूप से चीन में ही होता है। चीन न सिर्फ दुनिया के ज़्यादातर रेयर अर्थ धातुओं की आपूर्ति करता है, बल्कि उनसे बने चुंबक का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में रेयर अर्थ खनिजों के भंडार मुख्य रूप से तटीय रेत में पाए जाते हैं।
1: दोस्तों, आपके स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कार तक आधुनिक तकनीक की चमक के पीछे छिपे हैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स।

दोस्तों, आज के काम की बात हम कर लेते हैं। आज के काम की बात में हमने एक टॉपिक लिया है, वो है डिटर्जेंट। दोस्तों, हम सभी घर में सभी लोग डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि ये हमारी सेहत के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए कितने हानिकारक होते हैं? तो आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं और देखेंगे कि इनको हम किस तरह से इनकी जगह हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं और इनका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, साथ ही हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचा सकते हैं। दोस्तों, जो डिटर्जेंट होता है उसमें केमिकल्स, सर्फेक्टेंट और फॉस्फेट होते हैं, जो कि पानी में मिलकर उसे जहरीला बना देते हैं, और इससे जो हमारे जलीय जीव होते हैं उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम आती है। फॉस्फेट पानी में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि करते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियाँ मरने लगती हैं। डिटर्जेंट जो होते हैं वो मछलियों की सुरक्षात्मक बलगम की जो परत होती है उसको भी नष्ट कर देते हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी कम कर देते हैं। इसमें जो पाया जाने वाला है, इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो मिट्टी के प्राकृतिक जो पीएच तत्व होते हैं उसके स्तर को बिगाड़ देते हैं, और जो हमारे लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें भी मार देते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही इसमें जो सल्फेट्स और होते हैं वे भी हमारी स्किन के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कि हमारी स्किन को भी खुजली और एक्जिमा जैसे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है हमारी स्किन में, और सांस लेने में भी दिक्कत जैसी समस्याएं सामने आती हैं। दोस्तों, ये जिसमें पैकेज होके आते हैं, इनके पैकेजिंग के लिए जो प्लास्टिक यूज़ में लिया जाता है वो भी बायोडिग्रेडेबल कचरे के रूप में आता है, और वो भी नुकसान ही पहुंचाता है हमारे पर्यावरण को। अधिकांश जो लिक्विड डिटर्जेंट होते हैं वो मोटी प्लास्टिक के डिब्बों में आते हैं या थैलियों में आते हैं, वो भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, और भी इसके बारे में बात करेंगी कि इससे जो इतना प्रदूषण होता है, लेकिन अभी ये जो डिटर्जेंट है ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, तो हमें यूज़ तो करना ही है, तो इससे हम बचाव कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। दोस्तों, डिटर्जेंट चुनते वक्त हम ये ध्यान रख सकते हैं कि जो भी फॉस्फेट फ्री होते हैं या सल्फेट फ्री होते हैं और जिन पर बायोडिग्रेडेबल लिखा होता है, ऐसे प्राकृतिक और इको फ्रेंडली जो डिटर्जेंट होते हैं उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही विकल्प के तौर पर हम रीठा या उससे बने जो हमारे पारंपरिक होते थे, पहले बड़े बुजुर्ग काम में लेते थे, रीठा के पानी से भी कपड़े धो देते थे, तो वो भी हम थोड़ा यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन अब आजकल बाजार में बहुत सारे जो है बायोडिग्रेडेबल ऐसे डिटर्जेंट आते हैं वो नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, तो ऐसे हम डिटर्जेंट को यूज़ कर सकते हैं। और कुछ जो डिटर्जेंट अभी मार्केट में अवेलेबल है वो पूरी तरह से नारियल, नीम और नींबू के अर्क से बने हुए प्राकृतिक डिटर्जेंट भी मौजूद हैं, तो वो भी हम यूज़ में ले सकते हैं। और

0: आजकल प्लांट बेस्ड डिटर्जेंट भी यूज आ रहे हैं, उन्हें भी हम यूज ले सकते हैं और हमारी हमें हम अपने पर्यावरण को और अपने आप को भी ऐसे नुकसान से बचा सकते हैं। तो ये थी हमारे आज के काम की बात, आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
1: और दोस्तों, इन दिनों दुनिया भर का आकर्षण है फीफा विश्व कप 2026। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज के 72 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और अब सिर्फ 32 मैच बाकी हैं। तीन देशों की मेजबानी में हुए ग्रुप मैचों ने फुटबॉल जगत में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हमारे सामने पेश किया है। दोस्तों, इस बार 48 देशों वाले टूर्नामेंट के नॉकआउट राउंड में अफ्रीका की रिकॉर्ड 9 टीमों ने जगह बनाई। यह महाद्वीप के वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके उलट एशिया से सिर्फ 2 टीमें जापान और ऑस्ट्रेलिया ही राउंड 32 तक पहुंची हैं। ग्रुप के मैच में कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर अपने इतिहास में पहली बार नॉकआउट में प्रवेश किया है। कांगो के या एन वीसा ने 48वें मिनट में पेनल्टी और 90+1 मिनट में ये चीज हासिल की और फिस्टन मोएल ने 78वें मिनट में गोल करके टीम को बढ़त दिलाते हुए जीत हासिल कराई।

दोस्तों, राजस्थान की मरु कोकिला यानी रेगिस्तान की कोयल के नाम से प्रसिद्ध गौरी देवी जी को हम आज याद कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायन शैली को देश विदेश में पहचान दिलाई।

दोस्तों, 24 अप्रैल 1920 को राजस्थान में जन्मी गौरी देवी ने की जो संगीत की शिक्षा थी वो उन्हें पारिवारिक वातावरण से ही मिली थी और वे मांड गायन के साथ साथ ठुमरी, भजन और गजल भी गाती थी। दोस्तों, 1957 में उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर मांड गायन प्रस्तुत किया था शुरू किया था और जिससे वे अत्यंत लोकप्रिय हुई। उन्होंने प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत केसरिया बालम

लोकप्रिय हुई। उन्होंने प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत केसरिया बालम पधारो मारे देश को देश विदेश में लोकप्रिय बना दिया। 1983 में मॉस्को में आयोजित भारत महोत्सव में भी उन्होंने अपनी प्रस्तुति से राजस्थान का गौरव बढ़ाया था। और साथ ही राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1986 से में उन्हें सम्मानित भी किया गया और राजस्थान सरकार ने उन्हें मरणोपरांत राजस्थान रत्न से भी सम्मानित किया, जो राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आइए हम भी उन्हें याद कर लेते हैं।

साथ ही दोस्तों आज हम याद कर रहे हैं हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार और तिलस्मी यानी कि फैंटेसी और रहस्य रोमांस साहित्य के प्रवर्तक देवकी नंदन खत्री जी को। आज उनकी जन्म जयंती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना चंद्रकांता, जिसे कौन नहीं जानता, जिसने हिंदी भाषा और उपन्यास साहित्य को अत्यंत लोकप्रिय बनाया। 29 जून 1861 को बिहार में उनका जन्म हुआ। उन्हें हिंदी का पहला प्रमुख तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासकार माना जाता है। चंद्रकांता इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक गैर हिंदी भाषी लोगों ने इसे पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। उन्होंने चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजल की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोंडा, कटोरा भर और भूतनाथ जैसी रचनाएं रची। भूतनाथ को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। देवकीनंदन खत्री की सभी कृतियों में मनोरंजन की जो इतनी अधिक कौतूहलवर्धक और रोचक सामग्री मिलती है, उसका सारा श्रेय देवकीनंदन खत्री के अनोखे और अप्रतिम बुद्धिबल को जाता है। दोस्तों, हिंदी के औपन्यासिक क्षेत्र का आपने आरंभ ही नहीं किया, उसमें उन्होंने बहुत ही उच्च, उज्ज्वल और बेजोड़ स्थान प्राप्त किया।

0: जी हाँ दोस्तों, आज की मुलाकात बस अब इतनी ही। कल आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। मैं थी आपके साथ हेमलता, और मेरे साथ
1: मनीषा जोशी बोहरा।
0: लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम व्यू 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर।

श्रोताओं, लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे गौरी देवी राव पार्टी का गाया ये लोक गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं शमसुद्दीन का गाया ये लोक गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए सुगम संगीत।

जनाब सुदर्शन फाकिर, मेरा उनका साथ रहा है कुछ 40 साल से। जलंधर रेडियो पे थे वो, मैं वहां से गाता था। फिर यहां आके मैंने उनका एक फर्स्ट एल्बम एक ही शहर का जो होता है वो फाकिर साहब का था, उसी में से ये नज़्म है।

श्रोताओं, सुगम संगीत में अभी आपने सुना गुलाम अली साहब की इस रचना को। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये अगली रचना।

चंदन दास की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 11 बजे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

पापॉन और श्रेया घोषाल की आवाज़ में बॉबी जासूस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। बोल लिखे स्वानंद किरकिरे ने और धुन से सजाया शांतनु मोइत्रा ने। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत बॉम्बे टॉकीज फिल्म से।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से। आवाजें सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और नताली डी लूसियो की है। बोल लिखे स्वानंद किरकिरे ने और धुन से सजाया अमित त्रिवेदी ने।

काई पोचे, यह है फिल्म का नाम। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं अमित त्रिवेदी और मिलिन अय्यर की, बोल लिखे स्वानंद किरकिरे ने और धुन से सजाया अमित त्रिवेदी ने।

अगला गीत दिलजीत दोसांझ, राज राजोद और साथियों की आवाज़ में, आइए सुनते हैं क्रू फिल्म से।

ये आवाज़ थी अरिजीत सिंह की, बोल लिखे अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन से सजाया प्रीतम ने। फिल्म का नाम कलंक। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लफंगे परिंदे फिल्म से।

स्वानंद किरकिरे के बोल थे आर आनंद का संगीत और शिल्पा राव की आवाज़ों में लफंगे परिंदे फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं सत्यमेव जयते फिल्म का ये गीत।

जुबिन नौटियाल, नीति मोहन की आवाज़ों में। सत्यमेव जयते फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। बोल लिखे मनोज मुंतशिर और नासिर काजमी ने, धुन से सजाया रोचक कोहली, नुसरत फ़तेह अली खान ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, एयरलिफ्ट फिल्म से। आवाज़ें अमाल मलिक और अरिजीत सिंह की है।

सत्य प्रेम की कथा। इस फिल्म के गीत सुनवा रहे हैं हम आपको। आवाज़ें मीत ब्रदर्स मोनाली ठाकुर और पीयूष मेहरोलिया की है, बोल लिखे कुमार ने और संगीत से भी सजाया मीत ब्रदर्स ने। आइए सुनते हैं मीत सत्य प्रेम की कथा फिल्म का ये गीत।

पुष्पा द राइस फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहली रचना बुंदू खां पार्टी के स्वर में।

होना थारे देश मान पिजाती नरतन अरे हिक ढोलो दूजी मां मारवी ए जी करी।

ये रचना अभी आपने सुनी हाकम खां के स्वर में। आइए सुनते हैं लोक संगीत कार्यक्रम में अगली रचना गंगा कलावंत के स्वर में।

अभी आपने सुना बुंदू खां पार्टी को। आइए सुनते हैं लोक संगीत कार्यक्रम की आखिरी रचना आंचल भट्ट की स्वर में।

आंचल भट्ट के गाए इस लोकगीत के बाद लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुने सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको आज सुनवाएंगे अभिजीत सावंत के गाए गीत।

0: अदनान सामी और आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 1 बज रहे हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। शेखावाटी क्षेत्र के लिए बहुप्रतीक्षित यमुना जल परियोजना के लिए आज राज्य के हरियाणा सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में हुआ। समझौते पर हस्ताक्षर के समय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। 33,379 करोड़ रुपए की इस परियोजना से हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से राज्य के शेखावाटी इलाकों तक भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से यमुना का पानी पहुंचाया जाएगा। इससे चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों के शहरों और गांवों में पेयजल आपूर्ति बेहतर होगी तथा कृषि कार्यों के लिए भी जल उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज का दिन दोनों प्रदेशों के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री के संकल्प के कारण ही इस प्रोजेक्ट में प्रगति हुई है।
2: निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस बात को याद रखे, क्योंकि राजस्थान में पानी की जो समस्या है वो आप सभी किसी से रुकी हुई नहीं है। ये समझौता दोनों राज्यों की परस्पर सहयोग और भावना को उत्कृष्ट उदाहरण है। सच्चे अर्थ में टीम इंडिया की भावना का प्रतिबिंब है, जहाँ राज्य आपस में प्रतिस्पर्धी नहीं सहयोगी बनकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनते हैं। हरियाणा और राजस्थान के संबंध केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं, हमारी सांस्कृतिक जड़ें जुड़ी हुई हैं। हमारी बोलियां, हमारी परंपराएं, हमारी लोक संस्कृति, हमारे सामाजिक सरोकार सदियों से एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों राज्यों के लोग हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाया। ये समझौता उस आत्मीय संबंध को और अधिक दृढ़ करने वाला एक ऐतिहासिक अध्याय सिद्ध होगा।
1: राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने कहा है कि प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित नहीं थी, बल्कि यह व्यवहारिक जीवन और समग्र विकास से जुड़ी हुई थी। राज्यपाल ने आज जयपुर के एक निजी विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर आयोजित 5 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति को प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से देश के सर्वांगीण विकास का माध्यम बताया। प्रदेश में लगभग 43 दिनों के लंबे ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से सभी सरकारी और निजी विद्यालय फिर से खुल गए हैं। भीषण गर्मी के कारण शिक्षा विभाग द्वारा इन छुट्टियों को

0: आगे बढ़ाया गया था। इसी के साथ स्कूलों में नए विद्यार्थियों को जोड़ने और ड्रॉपआउट बच्चों को वापस मुख्यधारा में लाने के लिए प्रवेशोत्सव का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। इसके तहत शिक्षक वार्ड पंचों, सरपंचों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर घर घर जाएंगे। प्रदेश भर में विभिन्न जिलों में भी अवकाश के बाद स्कूल खुलने के साथ ही स्कूली विद्यार्थियों की चहल पहल शुरू हो गई है। ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के बाद आज से राजस्थान न्यायालय सहित राज्यभर के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित जनसुनवाई फिर से शुरू हुई। अब न्यायालयों का कार्य समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई, नए प्रकरणों की पेशी और अन्य न्यायिक कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे। जैसलमेर में पर्यटन और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यूआईटी मूल सागर क्षेत्र में गोल्डन ओएसिस फार्म हाउस योजना शुरू करेगा। इस योजना के तहत 142 फार्म हाउस भूखंडों और 46 व्यावसायिक दुकानों की खुली नीलामी की जाएगी। यूआईटी को इस योजना से 22 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिलने की उम्मीद है। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर आज सुबह एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना दूदू क्षेत्र के महला गांव के पास सुबह करीब 5 बजे हुई। चित्तौड़गढ़ स्थित सांवरिया सेठ मंदिर के दर्शन कर जयपुर लौट रही एक बस का एक्सल टूटने के कारण उसे सड़क किनारे खड़ा किया गया था। इसी दौरान पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी, जिससे बस खड्डे में पलट गई। पुलिस ने घायलों को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भिजवाया है और फरार ट्रक की तलाश की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 कल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस परीक्षा के लिए राज्यभर से 370,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 280,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के दौरान कुल 75% उपस्थिति दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार, हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता कृषि विज्ञान केंद्र काजरी की तकनीकी अधिकारी कुसुमलता से दिनेश रणेजा की बातचीत।

0: कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाइया ने दिनेश राणे जरा घने मानसू राम राम और नमस्कार सा। आपने जानकारी देवा खेत बचाओ अभियान रे महीने आईसीटी री कई भूमिका होया करे। कार्यक्रम में आज पधारिया है इंजीनियर कुसुम लता, आप तकनीकी अधिकारी है कंप्यूटर में कृषि विज्ञान केंद्र काजरी जोधपुर मैंने। कुसुम लता जी राम राम।
1: राम राम। धन्यवाद। आकाशवाणी जोधपुर सुनन वाला सभी श्रोताओं ने और विशेषकर अन्नदाता किसान भाइयों और बहना ने मारो सादर प्रणाम।
0: कुसुम जी, आजकल किसान भाई पढ़िया लिखिया भी है, कई टबरिया जी का है एग्रीकल्चर में विशेष कोर्स करता थका, आपरे ग्रामीण क्षेत्र में आवे और नवाचार करता थका खेती करे और खेती भी एडी जबरदस्त करे के उम्र मैंने मुनापो जी का है कमारिया है।
1: हाँ सर,
0: आप आज जानकारी दिलो अपनो विषय है के भाई खेत बचाओ अभियान रे महीने आईसीटी री भूमिका, तो सगला सु पहला बात आवे के आ आईसीटी कई होवे।
1: आईसीटी री देखो फुल फॉर्म और एक शॉर्ट फॉर्म है, इरी फुल फॉर्म होया करे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इको मतलब है कि सूचना ने आपा संचार तकनीकी के माध्यमों किया दूर दूर तक पहुंचा सका, किसान भाइयों और बहना तक किया क्या पहुंचा सका। तो एक के अंतर्गत आपा के मेन आया करे मोबाइल आया करे है, इंटरनेट आवे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आया करे और मोबाइल एप्लीकेशंस आया करे, वेबसाइट आया करे और एड़ा ही इसी टाइप का कई सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जिके माध्यम आपा तुरंत सूचना ने एक जगह दूसरी जगह तक संचारित कर पावा।
0: सही बात बतेसा। और किसान बारे टाइम रे मैंने जदेज अच्छी खेती कर पावे के किसान भाई ने आपरे खेत में बैठा बैठा घर बैठा बैठा तमाम प्रकार की जानकारी है मिल जावे। हमें बात आवे के अबारे बगतरे मैंने किसान भाई जी का है तकनीकी रो ज्यादा उपयोग कर रिया है काज रिया है सोशल जी

0: ही मीडिया है।
1: हाँ जी,
0: क्यों किसान वास्ते आभार भगत रे महीने बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रही है?
1: देखे आजकल कई किसान भाई बहन जितना भी है, आजकल ज्यादातर लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने आवे व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स है। आजकल सब चीजों सभी युवा जो है, अपना ग्रामीण युवा है, वे सब भी परिचित है और सभी उपयोग में लेवे।
0: हाँ
1: तो आ प्लेटफॉर्म रे माध्यम हूँ वे वीडियो देख के कृषि विज्ञान केंद्र में कई कई गतिविधियां चल रही है, वहां के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, किसान जो सफल है बाकी कहानियां देख के प्रेरित भी हो सके। तो ये हिसाब हूँ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा उपयोगी है आज के टाइम में।
0: पहला तो पुराने भगत में कुसुम जी कहीं हो तो के किसान भाई मिलता करतन सा
1: हाँ
0: जन
1: जी,
0: बैठन बात करता है कि भाई थे किसी फसल ली हो, किसा बीज लिया हो, करिया हो। पर आजकल जो ए तकनीक आई है, आप जो बात बते कि भाई ये सोशल मीडिया आयो है, तो साथे व्हाट्सएप चुको ग्रुप है, समूह है, ज्यादा ज्यादा किसान भाई जुड़े रहे ताकि खेती बाड़ी संबंधित जी की जानकारी है या कोई सरकार कोई अड़ी योजना है या कोई मदद है वह मिल सके। किन तरह वो जो व्हाट्सएप समूह किसान भाई काम में लेवे तो किसान मदद कर सके?
1: देखो सर, जो कृषि विभाग है, कृषि विज्ञान केंद्र है और जो आईसीआर का संस्थान है, वे सब किसाना का व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे है। तो वह व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम में बहुत सारा किसान वहां के साथ जुड़ेड़ा है। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पर समय समय पर मौसम की जानकारी है या फिर कीट रोग की जानकारी है, हर तरह की जानकारी जो भी उपयोगी है समय समय पर वहां लोगों ने प्रसारित करी जावे, प्रशिक्षण के बारे में जानकारी है वह किसानों तक पहुंचती रहे। साथ ही किसान की भी अगर कोई समस्या है तो वे वीडियो फोटो डाल के और विशेषज्ञों सीधी सलाह प्राप्त कर सके।
0: सूचना और संचार आदि का प्रौद्योगिकी की साधन है, ये किसान भाई ज्यादा से ज्यादा काम काज लेवे और ज्यादा से ज्यादा किसान भाई जुड़ जा, वह किसान भाई आपरे घर बैठा बैठा प्राप्त कर ले, वहां तक भी वे भेज सके। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी राज्य का साधन जो आप भात मात्रा बताया हो, किसान वास्ते कितना उपयोगी है?
1: ऐसा बहुत उपयोगी है आज के टाइम में। अगर किसान घर बैठे बैठा कोई भी जानकारी प्राप्त करनी चाहे, कोई भी मेथड देखनी चाहे कि भाई कोई सी काई चीज किया मैंने करनी चाहिए, तो वो वीडियो के माध्यम से जितना भी ये यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वहां पर उपलब्ध सभी चीजों का वीडियो बना वहां पर डालेड़ा है। तो किसान भाई बहन घरे बैठा बैठा वहां वीडियो ने देख के और अच्छी तरह वह विधि की जानकारी प्राप्त करके खुद लागू कर सके।
0: एजी का मोबाइल एप्स है, किसान सुविधा ऐप, प्लांटिक्स, कृषि फाई, पीएम किसान ऐप, इफको किसान, ई फॉर्म्स, राज किसान सुविधा ऐप, ए खेत बचाओ अभियान ने किन तरह सफल बनोने मैंने आपने मदद कर रहा है अबारे भगत में?
1: जो अभी मोबाइल ऐप है आपकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है और मेन चीज का ये है कि सही समय पर सही सूचना को पहुंचना बहुत जरूरी है। तो सही निर्णय लेने में सही समय पर सही सूचना को पहुंचना बहुत आवश्यक है, वहां की बहुत बड़ी भूमिका है। आपा ज्ञान मौसम की जानकारी है या कोई भी प्राकृतिक आपदा आने वाली है तो भी की सारी जानकारी आपने समय समय पर मिल सके। इनमें आपा ज्ञान आपा के घर में या परिवार में कोई भी समाज में आपा कोई भी कार्यक्रम करा,
0: हाँ
1: आप अभी की एक कार्य योजना बनाया करा और कार्य योजना और सही निर्णय के माध्यम हुई हर प्रोग्राम सफल बनाया करे और ये कार्य योजना ने संपादित करण वास्ते चरण पर विचार करिया करा।
0: वे किसा किसा ऐसा किसान भाई ने जानकारी दे रहा हो आप?
1: देखो साहब, जो पहलो चरण है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अठे दो किसान रो कंपेरिजन करा ला आपस में कि जो पहलो चरण है वो है बुआई की सही तिथि रो निर्धारण। अगर बुआई आपकी टाइम पर होगी, सही तिथि पर होगी तो चालोला और आपने फायदो मिलेला। तो बुआई कि जितना भी चरण है ना, हर चरण पर मोबाइल ऐप रो हर मोबाइल ऐप री अठे यूज आवेला और निर्णय लेवन में आपको उपयोग आवेला।
0: हाँ।
1: तो सही तिथि रो निर्धारण आप क्यों करा करा मानसून पर।
0: हाँ।
1: कि भाई मानसून कद आवेलो बी के अनुसार ही आप बुआई की तिथि को निर्धारण करा,
0: तारीख उठा पड़ जावे।
1: बिल्कुल साहब, इके बेस पर ही आपारी पूरी खेती री प्रक्रिया चालिया करे। ठीक है साहब, दूसरो चरण आपको आवे कि सही समय पर सिंचाई और उर्वरक को प्रबंधन भी बहुत ही जरूरी होया करे।
0: कर देना चाहिए
1: वो भी टाइम पर, आपने इकी भी जानकारी आपने मोबाइल ऐप के माध्यम मिल जाया करें।
0: हाँ।
1: तीसरो चरण व्या करे कि सही समय पर कीट एवं रोग नियंत्रण यानी कि यहाँ को भी करनो यानी कि फसल सुरक्षा करनी भी बहुत जरूरी है।
0: सही है सर,
1: कट करने कौन सी बीमारी आने वाली है इसकी जानकारी भी आपने ऐप के माध्यम में मिल जावे और बी की रोकथाम क्या करनी है इसकी जानकारी भी समय समय पर आपने ऐप के माध्यम में मिल जाया करे। चौथो चरण आपको है सही समय पर कटाई। सही समय पर कटाई करनो भी बहुत ही आवश्यक है। फिर पांचवो चरण है आपकी प्राकृतिक आपदाओं की सही समय पर जानकारी की उपलब्धता।
0: हाँ, सब मोटी बात है सर।
1: आप सही समय पर बुआई भी कर दी, आप सारी प्रक्रिया

0: या सही सही सही डंगू चालियां रखा तो भी अगर प्राकृतिक आपदा आ गई और आपने जानकारी नहीं मिली और आप इसकी सुरक्षात्मक उपयोग नहीं करिया तो आप री फसल बर्बाद हो जावेला। अगर आप री फसल खड़ी है तब तो आप कुछ नहीं कर पाओला, लेकिन अगर आप अनाज निकाल लियो और आपने प्राकृतिक आपदा की जानकारी समय पर मिल गई कि भाई आंधी आने वाली है, बरसात आने वाली है, पालो गिरन वालो, ओलावृष्टि होने वाली है, आपका अनाज ने बचा सकूं। फिर छठो चरण है आपको फसल बीमा। अगर आपकी फसल बर्बाद हो जावे तो आप फसल बीमा की सहायता से अनुदान प्राप्त कर सको। फिर सातवां चरण है आपको उचित भंडारण की तकनीकियां और कटाई उपरांत प्रबंधन। वो जो इमें भी एक ऐप है जो 50 किलोमीटर तक का दायरा में एग्री मार्केट जो ऐप है वो आपने मंडियारा भाव बतावे जिसके अनुसार आप उचित मंडी रो चुनाव कर सको।
1: किसान भाई इन एप्स रो उपयोग करे तो संक्षिप्त में आप किसान भाई ने जानकारी दे रहे हो किसी बात रो ध्यान रखना चाहिए।
0: सोशल मीडिया पे जो भी आपके जितनी भी चीजा दी हुई है वहां पर आंख मूंदर आपने विश्वास नहीं करना है। आपने जो कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या ICAR के संस्थान द्वारा जो ऑथेंटिक जो जानकारी है,
1: सटीक जी की
0: जानकारी है, आपने भी पर विश्वास करना है। भ्रामक चीजों पर आपने विश्वास नहीं करना है।
1: सही कहे सा। और मैं हालता कुसुम लता जी, आप किसान भाई ने कई संदेश देवनी चाहो, कई बढ़ाऊं देवनी चाहो।
0: देखो सा, अंत में मैं किसान भाई बहना ने आई कहनी चाहूं कि वे डिजिटल कृषि ने अपनाए और डिजिटल कृषि के माध्यम वे आत्मनिर्भर बन सके, वे खुद बैठा बैठा घर पे बैठा बैठा सही निर्णय लेकर खुद डॉक्टर बन सके, खुद अपनी रोग कीट प्रबंधन कर सके, सही चीजों की सही समय पर जानकारी प्राप्त करके। किसान ने स्मार्ट खेती करनी है, डिजिटल खेती करनी है और आत्मनिर्भर बनना है। और अगर कोई जरूरत पड़े तो किसान कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर है 155-261
1: नंबर है। एक दान बड़े बतावा 155-261
0: इरमाते फोन करे। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कृषि विशेषज्ञ के साथ में आप जुड़ कोई किसी भी तरह की जानकारी आप प्राप्त कर सको।
1: ठीक सा, ठीक कुसुम लता जी, आप कार्यक्रम में पधारिया और खेत बचाओ अभियान में मैंने ICT री कई भूमिका होया करे इन विषय माते किसान भाई ने जानकारी दे रही। आपने बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम।
0: राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूर्व वेरियो है दिनेश राणे जाने सीख दिराओ। राम राम।
2: कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत ये भेंट वार्ता अभी आपने सुनी।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी और एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 1:15 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी राजस्थानी में अपना कार्यक्रम गणगौर।

0: गणगौर कार्यक्रम सुनने वाली सगली सखियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूँ आपकी सखी हंसा कुमारी वैष्णव और हमारे सागे है आली सखी भावना लखारा। तो भावना जी, आपने घणे मानसू राम राम।
1: बिल्कुल हंसा जी, आपने हमारा घणे मान राम राम। और गणगौर प्रोग्राम होने वाली मारी प्यारी प्यारी सखिया ने भी आपकी सखी भावना लखारा घणे मानो राम राम। तो सखिया हताया तो करा लई, पर भी पहले होना एक प्यारा सो गीत।

0: तो हंसा जी,
1: हम्म।
0: आज री जी की इन भागदौड़ जी की भरी जिंदगी है नी, तो वीर महीने कही है कि जी की काम का जी महिला है वीर वास्ते एक चुनौती खड़ी हुए जाया करे है।
1: बिल्कुल
0: केवे केवे घर और नौकरी रे बीच रो जो को वो संतुलन है वो किकर बनान चाले है।
1: बिल्कुल
0: तो एड़ा रमाए ही अगर रसोई रो काम अगर आपा कम समय या व्यवस्थित तरीके से आपा करा हाँ तो वो कही है कि काफी टाइम है जो बच सके है।
1: बिल्कुल
0: और जिकी कहवे नहीं कि भाग दौड़ में जिकी बहने रे ऊर्जा खत्म हो जाए, वह ऊर्जा भी कहे नहीं कि कम खत्म हो सके है। तो आज अपा बात करा ला कि किन तरीके से अपा अपनी बेनियरी टाइम भी बचा सका और ऊर्जा भी बचा सका। हाँ
1: बिल्कुल भावना जी, आप सही बात कही कि जिकी काम काजी बहनिया है तो कुछ में छुट्टियारे बाद में भी बहना है जो आप काम माते जावे लाभे।
0: बिल्कुल
1: तो
0: हाँ
1: एडे रमाई ने देखो कि रोजिनारी साग सब्जी बनाओ ने समस्या कि भाई बेगा साग सब्जी किकर बन सके, और भी बहुत सारा काम है जो ने किकर मतलब जल्दी स्मार्ट तरीके वो काम कर सके। तो इन वास्ते बहनिया ने और चीजें कि भाई उन्हीं जिकी योजना है
0: हाँ
1: सप्ताह भर पहले ही बना लेवे, जैसे कि भी
0: हाँ
1: सप्ताह महीने प्रतिदिन कहीं खड़ो बने ला तो वो एक साथ जो सब्जियां हैं वे साफ कर रख देवे, या पचकिन दिन कौन सी सब्जी बनानी है उन्हें तैयारी पहले ही कर रख
0: हाँ
1: लेवे।
0: रोज नहीं हो चुना पड़े भी वैसे टाइम को नहीं लागे।
1: हाँ
0: हाँ
1: वास्ते। और देखो कई बात है, कई और एड़ो यह करे कि भाई जैसे बहुत जल्दी जल्दी में अपने निकलना होवे तो
0: हाँ
1: एड़ी चीज अपे बनावा चुकी अपे जल्दी से बना सके, जैसे दाल चावल अपे घंटा 2 घंटा पहले भिगोन रख दो या रात
0: हाँ
1: रात भिगोन रख दो तो भी वह बहुत जल्दी मतलब सीज जावे।
0: उबलने में हाँ जल्दी
1: हाँ
0: नहीं
1: समय
0: जाए।
1: कम लागे और पौष्टिक आहार भी अपने मिल जावे, और साथ में जैसे दाल चावल सीज रही है तो पास में आप सलाद काट लो या दूसरे दिन डे जो टिफिन है बारे तैयारी कर
0: तैयारी
1: लो,
0: कर दो।
1: और बच्चों ने भी कहो और परिवार प्रत्येक सदस्य ने कहो कि भाई विने साथे साथे थोड़ो सहायता करे, जैसे पानी रो टाइम आवे तो पानी भर ले, या पचे
0: हाँ
1: खाने रो जैसे पुरुष न होवे
0: वो
1: तो थाली
0: पुरुषा
1: है
0: देवे।
1: टेबल है ऐसे
0: हाँ
1: अगली चीजा साथ में मतलब तैयार कर रख दे तो मुँह कही हुए कि समय की बचत भी हुए और काम का जी जो बहनिया है और टाइम माते आप काम भी जा सके।
0: हाँ के नहीं के थोड़ो गुणो आगो पाछो करा दे तो बेनेर थोड़ी मदद हो जावे है।
1: हाँ
0: बे जे के देखो के सब्जी होवे है बेने कई करनो के देखो सुबह सुबह बेगो निकलनो होवे जद सब्जी काटो भी में टाइम गुणो लागे। एड़ी सब्जी कोई होवे कि बिना काट ना पा रात रा रख सका हाँ या 2 दिन
1: हाँ
0: तक रख सका
1: बिल्कुल एडी जी
0: तो
1: की
0: बिने
1: सब्जी
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: बिने 2 देनी दो काट और फ्रीज रे मैंने ढक्कन लगान डब्बा में मैंने
1: पर
0: रखनो।
1: भावना जी एक बात है कि कुछ सब्जियां अगर जो पानी छोड़िया करे
0: हाँ तो बेड़े
1: तो
0: हाँ बेन जी
1: सूखी
0: के हम
1: सब्जी
0: बचा
1: ने
0: बची
1: तय
0: गए।
1: करो, जैसे फूल गोभी है पत्ता गोभी है अबे धाना ने काटन बारे अखबार माते सुखा सका
0: हाँ
1: और
0: बिल्कुल
1: मटर छीलन रख सका, तो एड़ी चीजा का यहाँ पे पहला तैयार कर दो नहीं अपना समय भी बचत भी हुए और चीज भी टाइम माते पड़
0: टेम
1: जावे।
0: माते बन जावे तो कहने के समय मेरी बचत अपन इन तरह कर सका। हाँ और रसोई है बिने अपने कई करनो की हरुआत होते ही व्यवस्थित तरीके से रखनी चीजें।
1: बिल्कुल
0: जैकि देख लो कि कोई मसाला है तो वे मसाला ने कई करनो कि एड़ा दिखता डब्बा रे मैंने रखनो व्यू कहीं अपने दिखता रहे नहीं तो अपने ध्यान पर जगाने हो दिन हमारे जरूरत कौन पड़े
1: बिल्कुल
0: कि वो दिखियो है इनमें से धाना ले लो इनमें से मिर्चा ले लो।
1: बिल्कुल सही है।
0: और इरे अलावा के देखो कि जद छुट्टी होवे है अपने कहने के एक आदितवारी छुट्टी रिया करे है तो बिन टाइम कई छोटी छोटी तैयारी कर देनी जैसे कोई लसन छीलन रख देनो या इरो पेस्ट बनान पचे फ्रीज रे महीने रख दो अगर खराब नहीं
1: बिल्कुल
0: हुए तो अदरक रो पेस्ट बनान रख दो। तो ए चीज की छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखा लानी तो अपने टाइम री जरूर बचत भी करेला।
1: बिल्कुल भावना जी, बहुत ही चौकी बात आप बहना ने बताई और बहना अलर्ट भी हो जावेला, लिख भी रहा लग भी अपने काम की योजना क्या बनानी है तो करेला बहुत सारी बात सुना प्यारा सो एक गीत।

0: तो बेना अपने जिंदगी रे में स्वस्थ होनो कितो जरूरी भी आ करे है। तो ब्या ही अपने स्वस्थ जीवन रे मायने फिजियोथेरेपी रो होनो भी जरूरी भी आ करे है। तो इन फिजियोथेरेपी रो का योगदान है, तो इनरे दौरान ही फोन रे माध्यम से जानकारी देवन खातिर आमंत्रित करे हाँ डॉक्टर यशवंत नाथ जी ने, जिनसे बात करेला हंसा वैष्णव।
1: यशवंत जी, राम राम। आकाशवाणी जोधपुर गणगौर कार्यक्रम रे नांगणे आपरो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है।
2: बहुत आभार आपका।
1: यशवंत जी, सबसे पहला तो श्रोताओं ने आ बात बताओ कि फिजियोथेरेपी काई हुए है और इनरो काई उद्देश्य है।
2: फिजियोथेरेपी एक भौतिक चिकित्सा की पद्धति है
1: जी
2: जिसमें शरीर की मांसपेशियों, जोड़ों, नसों, हड्डियों के कार्य को बेहतर बनाने का काम करते हैं हम। हमारा उद्देश्य ये दर्द को कम करना ही नहीं बल्कि दर्द के कारण को समझकर उसे दूर करना, शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाना, व्यक्ति को स्वस्थ एवं सक्रिय व आत्मनिर्भर बनाना है।
1: जी, आज री इन भागदौड़ भरी जिंदगी में फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पहले से अधिक क्यों महसूस की जा रही है?
2: आजकल तेज रफ्तार जिंदगी में लंबे समय तक बैठकर काम करना, मोबाइल लैपटॉप चलाना और शारीरिक गतिविधियां कम होना, तनाव भरी जिंदगी और गलत पोस्चर जड़ी आदताओं शरीर में कमर दर्द, गर्दन दर्द।

0: કંધારો દર્દ, ઘૂંટણારો દર્દ એકદમ નોર્મલ હોય ગયો હે, જિસકી વજહ સે શરીર મેં કેવલ દર્દ કા હી રાત નહીં બલ્કિ ઇન સમસ્યાઓ કા મૂળ કારણ કો ભી સમજના પડતા હે હમેં
1: જી,
0: ઓર ઉસે દોબારા પ્રભાવી હોને સે ભી રોકને કે લિયે હમેં ઉસકા વ્યાયામ, સહી તરીકે સે વ્યાયામ કરાના પડતા હે. ઉસકો અલગ અલગ જૈસે હમારે પાસ મેન્યુઅલ થેરેપી હે, પોસ્ચરલ કરેક્શન થેરેપી હે, ચીજો કા ઉપયોગ કરકે ઉનકી જીવન શૈલી કો ઓર અચ્છા બનાને કા કામ કરના પડતા હે.
1: જી બિલકુલ યશવંત જી, अब श्रोता ने आप बात बताओ कि फिजियोथेरेपी जो है केवल शरीर में दर्द होने पर ही करानी चाहिए या पचे स्वस्थ व्यक्ति भी इनरो लाभ उठा सके हैं?
0: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, केवल दर्द होने पर ही फिजियोथेरेपी करवाने की जरूरत नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति भी फिजियोथेरेपी के बहुत सारे लाभ ले सकता है. आज के समय में जो है व्यक्ति लंबे समय तक बैठ कर काम करता है, उसके ऊपर काम का तनाव रहता है, शारीरिक गतिविधियां भी कम हो गई आज के समय में
1: जी,
0: तो इनके कारण बहुत सारी जो है बीमारियां शरीर में आने लग गई है, जैसे कि शरीर में पोस्चर सही नहीं रहता है, बैठने का तरीका सही नहीं होता है, ठीक है, उसकी वजह से शरीर में लचीलापन और उसकी ताकत कम हो जाती है, मांसपेशियों की
1: जी.
0: भविष्य में जैसे कि हमारे कोई चोट लगनी हो या फिर लग जाती है तो उसके लिए शरीर पहले से प्रिपेयर रहता है इन चीजों के लिए
1: जी,
0: ठीक है. खेल व्यायाम दैनिक कार्यों जैसे इन सारी चीजों में भी आराम मिलता है, अपने शरीर उतना अच्छे से सपोर्ट कर पाएगा
1: जी जी,
0: ठीक है, और बढ़िया एकदम जो है आदमी की लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी इससे
1: जी जी. बिल्कुल यशवंत जी, अब आप बात बताओ कि घर पर रोज कितनी देर तक सामान्य दिनचर्या में अपने व्यायाम करना चाहिए या कौन सी अड़ी हल्की एक्सरसाइज या व्यायाम है जो हर उम्र का व्यक्ति कर सके?
0: जी, तो इसमें क्या है कि घर पर अगर एक आदमी स्वस्थ व्यक्ति अपने शरीर के व्यायाम के लिए कम से कम 30 मिनट भी दे दे तो उसके लिए काफी है
1: जी.
0: के अंदर जैसे कि गर्दन की बहुत सारी कसरत होती है, गर्दन को घुमाना, ऊपर नीचे देखना, ठीक है, उसके अलावा जो अपने कंधों की है, कंधों का आगे पीछे घुमाना और कंधों का मूवमेंट है वो सारी है, कलाई और अंगुलियों को हिलाना, अपने पंजों को हिलाना, तो और अपनी कमर की जो है कमर को घुमाना, ये जो है कमर को ऊपर नीचे करना सीधा लेट के, ये कुछ कसरत है, और थोड़ा पैदल चलने भी एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है, जिसकी वजह से आदमी की जो है पूरी की पूरी शरीर की मांसपेशियां एक्टिव होती है. आजकल की दिनचर्या में लोग क्या है कि टाइम ही नहीं दे पाते हैं चलने घूमने को,
1: जिसकी
0: वजह से नहीं बहुत सारी है, तो आज के समय में तो चलना भी एक बहुत बड़ा व्यायाम हो गया है.
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल यशवंत जी, आप बात बताओ कि बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए फिजियोथेरेपी कई अलग अलग भूमिका रिया करे है, कहीं हर मतलब एक्सरसाइज जो है हर उम्र वास्ते अलग अलग होया करे है कहीं?
0: जी जी जी जी, हमारी जो फिजियोथेरेपी वो हर उम्र के लिए लाभदायक है
1: जी,
0: के बच्चों में शारीरिक विकास और सही मूवमेंट में सहायता प्रदान होती है, ठीक है, और उनकी जो शरीर की ग्रोथ है उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइजेस, ठीक है, और उनके जो खेल कूद के दौरान कभी चोट लग जाए तो उनको उसकी वजह से हो रही दिक्कतों में निकलने में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा. और अगर अपन युवाओं में देखें तो युवाओं का काम करने की पद्धति ऐसी हो गई है कि आजकल सभी लैपटॉप फोन मोबाइल के बिना रह ही नहीं पाते हैं
1: जी,
0: तो इसकी वजह से जो है कमर और गर्दन में दर्द एकदम आम बात हो गई है आज के समय में, तो इसकी वजह से इसमें आराम दिलाने के लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत है. फिर जो है युवा जो है खेल कूद करते हैं या फिर जिम वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे भी कभी कोई चोट लग जाए और उसकी वजह से कोई जो शरीर का हिस्सा है वो अच्छे से हिल नहीं पा रहा है, अपना पूरा मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसमें भी बहुत आवश्यक है
1: जी,
0: और उनका पोस्चर भी ठीक नहीं रहता है तो

0: लेकिन आज के समय में जो है शरीर का पोस्चर रहना, ठीक रहना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आ जाती है।
1: जी जी
0: और बुजुर्गों के अंदर है, उनके तो बुजुर्गों में जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती रहती है तो जो है शरीर के अंदर विटामिन और मिनरल्स के जो लेवल्स है वो नीचे कम होते रहते हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से। तो उसकी वजह से क्या है, जोड़ों का दर्द, गर्दन का दर्द, अकड़न आना, चलने फिरने में दिक्कत, ठीक है, फिर
1: जी
0: ये घुटनों का ऑपरेशन के बाद की जो थेरेपी होती है, ये सारे सभी चीजें फिजियोथेरेपी से सही हो सकती हैं।
1: जी जी यशवंत जी, आप बात बताओ कि जो गठियारा मरीज है वे फिजियोथेरेपिस्टों कितों को आराम पा सके या कितना लाभान्वित हो सके है?
0: जी, तो गठिया का जो है चार स्टेज में गठिया होता है। अगर कोई जो है मरीज पहली, दूसरी या तीसरी स्टेज तक है तो उसका उपचार हम कर सकते हैं कसरत करा के और थोड़ी बहुत जो भी है और बाकी सी सारी चीजें करके। क्या है ना कि गठिया होने का वजह तो शायद आंतरिक है, दवाइयों की भी जरूरत है, लेकिन दवाइयों के साथ साथ कसरत की भी जरूरत है क्योंकि आपकी मांसपेशियां जो है इतना वजन सहन नहीं कर पा रही है कि वो आपके सीधा घुटनों और जो जॉइंट है बॉडी के बड़े बड़े उन पे लोड ट्रांसफर होता है।
1: जी
0: जैसे जैसे वजन ज्यादा बढ़ता है उनके ऊपर तो उनकी वजह से उनको दर्द आना शुरू होता है। तो नियमित जो है हम कसरत करते रहते हैं ना तो
1: जी
0: उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा आराम मिलता है।
1: जी यशवंत जी, यशवंत जी आपसे और जानना चाहूँगा कि कई बार जो है एक्सीडेंट के दौरान या खेल कूद के दौरान अपन जो है घुटने का लिगामेंट्स है या पचे और भी जैसे पैरी गादी है वह फट जाया करे है, तो सर्जरी के बाद जैसे लोग शहरा में जगह लोग रहे वे तो बिना कहीं है एक्सरसाइज वगैरह या फिजियोथेरेपी लेन ठीक हो जावे, लेकिन ग्रामीण अंचल में जो लोग रहने वाला है बारह वास्ते फिर सिर्फ ऑपरेशन करान गांव चलिया जावे तो बहने कई नुकसान हो सके है क्योंकि ग्रामीण अंचल लोग ज्यादा इतना समझे को नहीं तो बहने कई करना चीजें।
0: तो बात जो है कि जो ग्रामीण स्तर का लोग है तो आजकल पूरा समय मायने फिजियोथेरेपी बहुत ही ज्यादा चलन में आई हुआ है। आपने हर गांव में एक ना एक फिजियोथेरेपिस्ट तो जरूर मिल ही जाएगा,
1: जी
0: लेकिन अगर फिर भी नहीं मिले तो आप जिनको ऑपरेट करिए वही डॉक्टर साहब आपने कसरत बतावा है वे आप पूरे अच्छे तरीका घरे जान करो और वे जी नियमित रूप को आपने बुला लिया है फॉलो अप वास्ते वो फॉलो अप ले वो ताकि वे आपने और ज्यादा आगे बढ़ा सके। जिन मायने आप नहीं और ज्यादा कसरत नई नई सिखा सके जो आपके शरीर वास्ते और आपके ज्वाइंट वास्ते बहुत ज्यादा लाभदायक हो।
1: जी जी बिल्कुल, डॉक्टर सू जुड़े रहना बहुत जरूरी है और आपरो बार बार चेकअप कराना भी जरूरी है। जी जी बिल्कुल यशवंत जी, आप बहुत सही बात बताई कि कोई भी सर्जरी हुए तो आप बिल्कुल उन डॉक्टर से जुड़िया रहो और आप रो जो एक्सरसाइज वगैरह है वो करता रहना चाहिए। बिल्कुल यशवंत जी, आज आप आकाशवाणी परिवार से जुड़िया तो आप रो बहुत बहुत आभार,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: धन्यवाद सर।
2: तो बेना अबार आपा फोन रे माध्यम से बात हुनी ही डॉक्टर यशवंत नाथरी हंसा वैष्णव री जिनरी प्रस्तुति और संयोजन हो रामनिवास चोयल रो। तो अबे हुना ओ प्यारा सो गीत।

0: है जो को सही है कट है में फ्रिज में रखी हुई चीज़ें भी ज़्यादा सही रहे। लेकिन
1: हाँ
0: पुराने जमाने लोग जो था वे प्राकृतिक तरीके हर चीज़ जो है सुरक्षित रखनी कोशिश किया करता था।
1: हाँ तो जो कि ग्रामीण महिलाओं रो ओ जो को पारंपरिक ज्ञान है वो केवल घरेलू अनुभव ही नहीं थो बल्कि पर्यावरण रे अनुकूल हो।
0: बिल्कुल
1: तो आपने इन लोक ज्ञान ने समझनो चाहिए, संजोन रखनो चाहिए, और जिकी अपन आने वाली पीढ़ी है मन तारी अपने जरूर पहुंचाना चाहिए।
0: बिल्कुल भावना, आप एक बात और बताई कि जो पुराना जमाने में लोग था हर चीज़ ने जो है बहुत अच्छे से संजोन रखता था।
1: हाँ
0: तो साल भर ही जो कि साग सब्जियां होती ही, पहला देखो कि जी हरी सब्जियां लोग थोड़ी कम खाया करता था,
1: हाँ
0: राबोड़ी है, पापड़ है, मंगोड़ी है, बड़ी है, ये साल साल भर तक सुरक्षित रखता।
1: बिल्कुल
0: और साथ
1: रखता
0: में
1: हूँ।
0: देखो कि बिन चीज में कहीं बिना चीजारा मैंने डाला होता कि उन्हें कीड़ों नहीं लगे और इली वगैरह नहीं लगे। तो इन वास्ते वे नीम रा पत्ता डालने उन्हें स्वच्छ और अच्छे तरीके से रखने की कोशिश करता है।
1: बिल्कुल रखता, तो अपने आज भी जरूर रखना चीजें।
0: बिल्कुल।

0: तो हंसा जी, आपने ध्यान है कि अगर अपने बचपन के मन में कोई गहरी चीज जोड़ी है नी, बसी ओड़ी है नी, तो बात क्या है नहीं कि मार हाथरी जो खाणो बण्योड़ो रसोई में है, जिकी आव थोड़ी खुशबू है नी, बहागणू बत्ती छुपियोड़ी है अपने जी।
1: बिल्कुल
0: और जद देखो कि अपा छोटा हाँ तो स्कूल आवता नहीं, तो जद आवता नहीं तो हगड़ों पहला अपने कई करती, माँ हमें दौड़न आवती ही
1: बिल्कुल
0: कहती कि आई गयो बेटा, और बण अपने हाथ में बैग है जो बो ले लिया करता हाँ, और वे कहता कि बेटा हाथ मुंडो धो ले, मैं थारे वास्ते खाणो तैयार करो हूँ। तो वो जदे अपा शब्द हुणता नहीं तो अपने 5-6 घंटा री जो स्कूली थकान ही नहीं बा भी हट जावती है। तो कहवे नी के मारे हाथरी रोटी दाल सब्जी खिचड़ी और मीठे चूरमुए, इनरो स्वाद केवल मसाले सु नहीं बणियोड़ो है,
1: बिल्कुल
0: बल्कि उनरे मायने मारो जो को प्रेम है, ममता है और अपनाई थे बा गुड़ियोड़ी, इन खातर जो वो बणियोड़ो खाणो है वो और ही स्वाद लागन लाग गया।
1: बिल्कुल भावना जी कहवे नी कि माए अड़ छाया नीमरी शीतल लागे छाँव, दुखरा डांगर काट दे सुख भर दे घर गाँव। माँ जो या करे ममता री मूर्ति या करे, माँ होया करे, अगर माँ हुए तो संसार और सगलो दुख फीको लागन लाग जाया करे। माँ है तो घर है, माँ है तो संसार है।
0: बिल्कुल। तो देखो कई बार अपा नहीं बीमार पड़ जाता हंसा जी, तो जदे बीमार पड़ता नहीं तो जदे माँ है जो अपने हाथों सु अपने हल्को फुल्को और पौष्टिक भोजन बनान खिलाया करती ही।
1: वही चौको लाग तो
0: हाँ उन टाइम देखो कि जो वो भोजन है कराता हाँ, तो दवाई सु ज्यादा तो मारे हाथ सु खिलायड़ो भोजन और जिकी मारी करियोड़ी चिंता और वो प्यार है वो दवाई में बत्तो असर करतो हो।
1: बिल्कुल। अगर माँ ओढ़े से माथे में हाथ भी फेर दे तो माँ तो दुखड़ो बंद हो जाओ, तो माँ खाने बैठ जाओ तो बीमारी छू हो जाती। क्यों? क्यों माँ ही जिया करे जो को बचपन लगान मोटो बेचे तक बच्चे ने आप रखने रखे, और माँ जी की छाया या करे नी पा तो भावना जी आप सगला ही जानो हाँ कि माँ रे बिना तो संसार ही अधूरो है।
0: बिल्कुल, अपने लाई माई है दुनिया रा मायने। तो अंसा जी गांवा रा मायने आज भी देखो नहीं तो माँ है जो सुबह सुबह उठन पूरे परिवार के वास्ते भोजन तैयार करिया करे है, और चूल्हो जगा और रोटियां सेके, और विने रोटियां री खुशबू और भिलोणा री जकी माखन री मैं के वाह वा, सुबह सुबह अलग ही जाया करे है सगला घरा एक ठोड़ बैठे और।
1: बिल्कुल हमेशा और
0: हाँ
1: रेवे मन रमाइने कि आज माँ कहीं बना वाला रसोई रुमाइने, आज मम्मी कहीं बना वाला, और वो सोच सोच न मन ही मन खुश होता कि आज माँ कुछ न कुछ बढ़िया जरूर बना वेला।
0: कह नहीं
1: बिल्कुल
0: कि मारा हाथरी खायोड़ी तो वाह भूल ही कोनी सका हा। तो इन्हें सागे ही सुना एक प्यारा सो
1: गीत
0: गीत।

0: भावना, आपे बात करी मारे हाथ रे भोजन री।
1: हाँ
0: और वो भोजन जो है सदियां सो बनतो आयो है, चाहे अगर अपने घर में सुविधा हुई या
1: तनी
0: नहीं
1: है।
0: भी हुई, क्योंकि आज टाइम में देखो कितने प्रकार जो साधन है भी आया है जिन सु बेगो बेगो खाना बने। लेकिन जब साधन नहीं थो तो भी अपनी माँ है अपने वास्ते खाना बनाती ही।
1: बिल्कुल बनाती है।
0: तो इन बदलते जमाने रे मायने देखो भावना कि साधन तो बदलिया ही है, और साथ
1: हाँ
0: साथ में अब देखो कि पुराने जमाने रे मायने बिना साधन भी अपनी बहना है किन प्रकार भोजन बनावती ही, और कई साधन बहता है। तो कह नहीं के रसोई केवल भोजन बनाने स्थान नहीं है, अब भारतीय परिवार की संस्कृति परंपरा और अपनत्व केंद्र तो रही है। साथ साथ में जब अपने परिवार मेहमान जद पधारे तो उन्हें स्वागत भी अगर आप करा तो रसोई से शुरू हुए।
1: हर बात रसोई भी यह करे हैं।
0: हाँ, और शुरू में देखो कि मिट्टी रा चूल्हा है बे शुरू से होया करता है, और साथ में मिट्टी रे चूल्हा रे बाद में गोबर गैस आयो, इंडक्शन कुकटॉप माइक्रोवेव स्मार्ट किचन तक आज जो जमानो है पहुंच चुको है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो कह नहीं कि इन रोचक यात्रा माते आप एक नज़र डाला तो देखो कि समय रे साथे साथे किन किन प्रकार है जो चूल्हा है आया है,
1: बिल्कुल
0: और
1: आया है।
0: भोजन की कई कई सुविधा जो है हुई है। कहने के पहला जो है कोयला री सिगड़ी बेती ही मिट्टी रा चूल्हा होता हर घर में बेता है।
1: हर घर में अपन ने देखने मिल जाता
0: हाँ,
1: है।
0: और सूखी टहनिया और बिन में बालनवा से छाना है, उपला है, और ऐसा प्रयोग में करिया जाता है।
1: अंसा जी, ए जी की लकड़ी ही नहीं तो ए नहीं बालन वास्ते चूल्हे में तो एक ही करती कि अपनी जी बहन ही चार पांच जने मिल हाँ ए चुगण वास्ते जाया करते ही।
0: चुगनवास जाती खेत हो
1: हाँ
0: तो खलियान हो तो बटे सू, कई बार तो गीली लकड़ियां ने भी तोड़ती ही पेड़ सू, जो
1: हाँ
0: कंटीला पेड़ होता है बाने तोड़ती, जो का पेड़ फायदेमंद नहीं होता है जिन पेड़ों कई कई कह के खरपतवार जो होते हो ताकि ईंधन रूप में मैंने काम आ जावे,
1: हाँ
0: जो तो बिन पेड़ा ने काटन वे लावती और सुखाती, और बहुत ही मेहनत और मशक्कत वालों काम हुआ करते हो भावना। और साथ में देखो अपने घर में जो दाव डांडा होता बारा गोबर सू उपला जो है
1: उपला
0: था।
1: तैयार करिया करता।
0: हाँ,
1: हाँ
0: और देखो कि अगर बरसात आएगी है मेह छांट आएगी है तो अपने बहना ने बहुत पहला मतलब जो है सुविधा करण रखनी पड़ती ही, महीनों महीनों तक जो है कई कहीं छाना और वे सब लान संजोन रखना
1: बेलाकन
0: पड़ता।
1: रखता तो जो को उन टाइम देखो बनियोड़ो जो को कहने के धुएं सु भरियोड़ी।

0: भावना,
1: हाँ
0: गीत सुनियो आपे, बाजरे री रोटी पोई फोपड़िया रो साग जी। तो
1: हाँ
0: बिल्कुल पहला रे टाइम में जगह लोग बाजरे री रोटी जिमता नहीं तो बड़ा सुराड़ा रहता है, पर
1: हाँ
0: आज देखो कि लोग ज्यादा ज्यादा गेहूं री रोटी जिमे और पाचन क्रिया जो है ज्यादा सही नहीं रहे।
1: तबरे दाई नहीं करिया करे
0: हाँ,
1: यार।
0: दाई नहीं करिया करे। और दूसरी बात यह कि अपे गेहूं री रोटी नहीं, अपे अगर सात्विक रोटी रूप में बना जिमा तो उन्हें पचन में भी समय कम लगे।
1: और टाबरिया भी जिम ले।
0: हाँ, टाबरे भी जी में, लेकिन देखो कि इनमें पचन में नहीं 18 घंटा लगे। जैसे टाबरे तो पचा ले कोई भी चीज, टाबर तो टाबर हुए, जिमता जिमता खेलते खेलते पचा ले। लेकिन बात अब है कि आजकल री रोजमर्रा में देखो कि बहुत सारी बीमारियां हैं और बीमारियां ने देखता थका अपने अड़ी रोटी जीमनी चाहिए जेकर पाचन बहुत जल्दी वे
1: जल्दी हो जावे
0: और
1: है।
0: अच्छे से वे। तो अड़े रमाई ने कही है कि सात्विक रोटी बनावा नहीं तो अपने शरीर वास्ते बढ़िया रहे।
1: हाँ
0: सादी रोटी अभी जिमो तो उन्हें पचौने लगे 18 घंटा, और
1: हाँ
0: सात्विक रोटियों पे सागा सु बनियोड़ी पे रोटी जीमा तो
1: हाँ
0: अभी ने 9 घंटा लगे।
1: तो आकीकर बने करे अंसा जी
0: बिल्कुल
1: यार।
0: भावना जी, मैं आपने बताऊं ला कि रोटी कीकर बढ़िया करे है।
1: हाँ
0: देखो चुकंदर आवे,
1: हाँ
0: सीताफल आवे,
1: हाँ
0: लौकी है और खीरा है और पालक है,
1: हाँ
0: मेथी है, ऐज ऐज का साग या करे। यहाँ आप छीलन बढ़िया, धोन बढ़िया, इन्हें पीस दो नहीं
1: हाँ
0: तो प्रतिदिन आप चाहो तो चुकंदर ने बढ़िया धोन किसन ने आटो चुको है बिना मैंने उसण देना।
1: चुकंदर मायने।
0: हाँ, चुकंदर मायने, कोई भी साग रे मायने, जेकर
1: हाँ
0: मैं आप रोटी जीमणी चाहवा,
1: हाँ
0: विशेषकर जो अड़ा साग है, मैं आपने नाम बताया जो को,
1: हाँ
0: तो इन्हें बनाने वास्ते पे देखो कि पहले तो सामग्री ले लो कि भाई मान लो आज आप चुकंदर ही रोटी बनाई
1: हाँ
0: तो एक मीडियम साइज रो चुकंदर ले लो, बढ़िया धोन छीलन बढ़िया किस दो। अब देख लो भाई चुकंदरों जो पेस्ट है वो कितो हुआ है, उन
1: हाँ
0: अनुसार आप आटो ले लो
1: आटो ले
0: गेहूं।
1: ला। हाँ
0: अभी मैं नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है,
1: हाँ
0: बिन रोटी ने आपे भी मैं ओसन दो।
1: हाँ
0: और इन रोटी ने अपने मिट्टी रे तवे रमाते धीमी आंच रमाई ने पकाने। हाँ
1: बनावनी है।
0: हाँ बिल्कुल। और रोटी बेल पर इनमें मतलब धीमी आंच रे माता पे सेका, और पछे वह अब जैसे आजकल है कि भाई तेल रे सागो भी अपने बड़ी समस्या बन लागी है,
1: बिल्कुल होन लागी
0: तो वो
1: है।
0: जीरो ऑयल जो की सब्जी बने है बिन मायने तेल नहीं पड़े।
1: नहीं पड़े बिल्कुल कौन पड़े
0: तो बिन
1: है।
0: रोटी ने अपे बिन सागरे साथे जीमा
1: हाँ
0: तो बहुत बढ़िया रिया करे। इनी प्रकार अपे लौकी री सब्जी है, खीरा री सब्जी है, सीताफल री सब्जी और पालक री
1: हाँ
0: सब्जी है,
1: सब्जी
0: बिन
1: रहा।
0: साथे अपे बिना मतलब पकाया बिने पेस्ट रे साथे अपे रोटी बनान सेकन बिन सब्जी रे साथे खा सको। और भावना जी आप बताओ कि वह विदाउट ऑयल जो है
1: हाँ
0: जीरो ऑयल मतलब वह सब्जी क्या बने, सखिया ने
1: दे
0: बताओ ताकि सात्विक रोटी रे साथे बिनो मेल करन सखिया जीम सके।
1: देखो आप आल और दूधी रो नाम ले ही लियो हो के दूधी है जो कि खावा तो इन वास्ते चौकी लागे ना अपने इन मेल मिलाप भी बैठ जावे है। तो देखो कि बिना भंगार भी अपानी साग बना सका। हाँ कि कढ़ाई गरम कर दो और बिन महीने जी जीरा रो तड़को लगा दो, प्याज टमाटर डाल दो, लौकी डाल दो, नमक डाल, हल्दी मिर्चा डाल और बिने ढक्कन लगा दो। ढक्कन लगा और बिने कई करो कि थोड़ी देर हिजन दो, पानी डाल दो।

0: अभी आपने सुना गणगौर कार्यक्रम आकाशवाणी जोधपुर का। ये सूर्यनगरी और एफएम सन सिटी चैनल है। इस समय दिन के 2:15 होने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्वकप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया से नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल

0: और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा का अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है।

0: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनोग्रेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनोग्रेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष अमीशा।
0: बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सोना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन स्ट्राकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में

0: ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुने NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम

0: सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
1: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का, लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य, और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा।
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी। आय इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ।
2: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
2: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
2: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल कंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी,

0: उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधरी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
2: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं, कोई बहाना बना देंगे। ठीक
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी।
0: हाँ। नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ माँ, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं।
1: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अरे चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा
1: सजा सजा बेटे सजा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सजा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ। है सोचा बेटा, सोचा सोचा, शाबाश सजा बेटा, है ना? चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल, चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।

0: कहना गरिया लूंगी मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी मैं तो साड़ी लूंगी।
1: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा उघेरा होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
1: फिर भी
3: अम्मा तू भी चले वापस?
1: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
3: अम्मा क्या सोच रही है?
1: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
1: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
3: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
1: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन नहीं मरना पड़े।
1: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
3: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
1: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
2: ये
1: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
1: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है।
1: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
3: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
1: हाँ हाँ
2: चलो
1: चलो, आगे चलकर देखते हैं।
4: ये देखो, ये पेड़
1: देख लो।
3: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
1: चलो।
5: इधर से निकल कर आओ।
3: अच्छा
2: आई,
1: क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ
3: अम्मा? अम्मा कांटा चुप गया आई।
1: अरे दिखा दो
3: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे।
3: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना।
2: हाँ बेटा, ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
1: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
1: और नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
1: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
1: क्यों?
3: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
1: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
3: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा।
2: हाँ बिल्कुल,
1: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
1: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को। तो
2: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
3: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
1: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
2: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने

0: बख्श दिया अब किसे काटे
1: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया
0: और क्या
1: ना जी ना अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में
0: हाँ है तो सही मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं जो बात इनके साथ वही उनके साथ
1: जीवा जीवा जी अब तो पेड़ नहीं कटेगा नहीं कटेगा
2: अरे चुप
0: क्या हुआ
1: अरे चुप्पा हाँ पेड़ अब नहीं कटेगा तो यही बात थी ना तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे है
0: तू समझ गई ना
3: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है अब तू ही बता किसे काटे
0: बता?
1: रहने दे तुम दोनों बड़े सयाने हो मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी हाय रे मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी
0: होंगी होंगी जरूर होंगी मगर ऐसे नहीं
1: फिर कैसे
0: चल घर चलते चलते बताता हूँ कि कैसे
1: चल
0: सुन हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे फिर हमें फल मिलेंगे फूल मिलेंगे बुलबुलें आएंगी कोयल गाएंगी गीत गाएंगी महुआ सींचेंगे हम फिर मेले जाएंगे खूब काम करेंगे हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे मछली पालेंगे मछली फल सब्जी महुआ कटहल बेचेंगे हाँ पैसे पाएंगे बुधनी को देंगे बुधनी खुश होगी कलह नहीं करेगी बिल्कुल नहीं करेगी झगड़ेगी भी नहीं क्यों बुधनी तब भी झगड़ेगी क्या
3: क्यों अम्मा तब भी झगड़ेगी
0: बोल ना
1: नहीं रे नहीं मुझे क्या शौक है झगड़ने का चल
0: सच्ची

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
6: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र

0: अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आपने सुना एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। अगली सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल। और जी, क्या है आपके हाल चाल? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। और कुछ लोग जो होंगे ना, अभी सोच रहे होंगे कि भैया हाल एकदम बेहाल है, क्योंकि वीकेंड के बाद में फिर से आता है मंडे। और मंडे भैया, जो भी लोग ऑफिस वर्कर्स हैं ना, उनके लिए मुझे लगता है श्राप होता है, क्योंकि मंडे भाई सुबह जल्दी उठ करके वही दिनचर्या, वही बोरिंग सा रूटीन कई लोगों के लिए, और वही फिर से बॉस की फटकार सुनने वाला दिन है। लेकिन इस पूरे दिन को अच्छा बनाने के लिए, इस दिन को थोड़ा सा पीसफुल बनाने के लिए, इस दिन को थोड़ा सा आपके लिए, आपके हित वाला बनाने के लिए, 5 बजते ही हम बिल्कुल जी लेकर आ जाते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम, जिसका नाम है युवाणी। और मंडे वाला जो युवाणी होता है ना, वो ऑलरेडी स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि आज के दिन हम वही गाने बजाते हैं जो आप सुनना चाहते हैं और आप फरमाइश करते हैं। फिलहाल मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो रागे रोहित, और आज मेरे साथ है
1: आपकी रेडियो हम सफर हर्षिता टाक। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इस कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। श्रोता, आप सुन रहे हैं पसंद कार्यक्रम। शाम के 5 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 531 और 531 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 102.1। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो राहगीर रोहित, मेरे साथ है हर्षिता और आज है मंडे। अगर आप अभी हमें फरमाइश भेजना चाहते हैं तो भैया जी आपके पास दो विकल्प है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9411323359। एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारे मोबाइल नंबर यानी कि हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9411323359।
1: और इसी के साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है yuvapasandjodhpur@gmail.com।
3: तो फटाफट से इस पर मेल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं और किसको डेडिकेट करना चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल हम अपनी तरफ से एक गीत आपको डेडिकेट करते हैं और आपको ये सुनाना चाहते हैं, इसके बाद में सारे गीत वही सुनेंगे जो आप हमें फरमाइश करेंगे।

0: बिल्कुल जी, इसी प्यारे से ट्रैक के बाद शुरू करते हैं फरमाइशों का ये सिलसिला, और देखते हैं सबसे पहली जो फरमाइश है वो कहाँ से आई है। और ये जो है फरमाइश आई है भाटापारा छत्तीसगढ़ से, जो कि करी है हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नौलिक खाल वर्मा।
1: इसी के साथ अगली फरमाइश आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS निर्मला और विशाल नुहावकर की, वही मलकापुर से नारायण सोपान और आशीष की।
0: बिल्कुल, और इन्हीं के साथ साथ जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेचा, पूनम गगनेचा और विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा के साथ साथ खाड़ा फलसा जोधपुर से भी आयशा फहीमा अफसाना मिसबाह सायरा साबिर साहब मोहम्मद असरलान अब्दुल अहद अस्मा और साहिल ने इसी गीत के लिए फरमाइश की। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये म्यूजिकल ट्रैक।

0: दोस्तों कुछ पल और कुछ समय इतने ज़्यादा खास होते हैं और इतने अच्छे होते हैं कि हम कई बार इन्हें अपने गानों के साथ या किसी यात्रा के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे गीत होता है, ऐसा कुछ म्यूजिक होता है कि हमें उसी वक्त सुनना होता है। कहीं हम घूमने जाए तो हमारा कुछ एक अलग सा ट्रैक हम बना के चलते हैं कि हमें ये वाले सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, या फिर कभी किसी की याद में हम, या फिर कई बार हम ऐसा भी होता है कि हम गीत सुनते हैं और हमें किसी एक स्पेशल वन की याद आती है, या फिर हम अपने घर को मिस करते हैं अगर हम कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं तो, या अगर घर पे भी है तो अगर घूमने जा रहे हैं तो हमें उस एक म्यूजिक ट्रैक का बहुत अच्छे से ख्याल आता है और हम उसमें गुम सा हो जाते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने फरमाइशी कार्यक्रम में और देखते हैं अगली फरमाइश कहाँ से आई है।
1: बिल्कुल जी, अगली फरमाइश जो है वो आई है गांव मिलाना तहसील बावड़ी जिला जोधपुर से, जो कि करी है छलना मेघवाल, रविंद्र देवेंद्र अनीता और फुली देवी मेघवाल ने।
0: और इसी के साथ अगली फरमाइश आई है हरियाणा से अंकित, मौनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम और साहिल कांगड़ा की।
1: बिल्कुल, और भोपालगढ़ से फरमाइश करने वाले हैं राजेश देवराया कृष्ण।

आरती। और इनके साथ साथ देखते हैं एक और फरमाइश आई है जो कि सीधी रंगीनी छत्तीसगढ़ से आई है, जो कि करी है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं इनकी पसंद का ये वाला म्यूजिकल ट्रैक।

0: बिल्कुल जी, कार्यक्रम के बाद इस बहुत प्यारा सा आपने गाना सुना, और इसमें आप बहुत कुछ फील करते हैं ना। जैसे अर्षदा ने पहले बताया था कि म्यूज़िक जो होता है वो एक जर्नी होता है, एक अपने आप में लैंग्वेज होता है, जिसमें ना कई सारे इमोशंस छुपे होते हैं। कभी हम किस इमोशन से रिलेट करते हैं और कभी हम किस इमोशन से रिलेट करते हैं, एकदम जब आपका मूड होता है ना वैसे ही हम लोग जो है म्यूज़िक सुनता है, और वैसा ही संगीत जो है हमें मिल जाता है। और ऐसे ही आज का दिन है, जिस तरह का भी आपका मूड है, जिस तरह का भी संगीत आप सुनना चाहते हैं, जिस तरह का भी म्यूज़िक आप सुनना चाहते हैं या किसी को भी डेडिकेट करना चाहते हैं, वो आज आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है आप ही के लिए बना है बिल्कुल। और इन्हीं के साथ साथ देखते हैं आज की जो पहली फरमाइश, मतलब पहली तो वैसे बहुत सारी आ चुकी थी, लेकिन अभी जो फरमाइश आई है वो आई है गांव फ्रांसिस जिला हिसार से, जो कि करी है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने।
1: वही छत्रपति संभाजी नगर से आइए राजेश साबले, राजदीप राशि, श्रीमती शीतल राजेश की।
0: बिल्कुल, और इन्हीं के साथ साथ हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान, इन सभी ने इसी गीत के लिए फरमाइश की है। तो आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये म्यूजिकल ट्रैक।

0: बिल्कुल जी, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युवा पसंद कार्यक्रम जिसका नाम है युवाणी। आपके साथ मैं हूँ रेडियो राहगीर रोहित, और मेरे साथ है हर्षिता। और आज सोमवार है, आज के दिन हम वही गीत सुनाते हैं जो कि आप फरमाइश करके हमें भेजते हैं। और इन्हीं के साथ जो हमारी फरमाइश है वो आज चली है गाँव लूणी जंक्शन जिला जोधपुर से, जो कि करी है अजीज टेलर, शबाना बानो, रुखसार बानो, काजोल बानो, आदिल खान, और इनके साथ साथ
1: वही बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से फरमाइश आई है राम शरण, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा की।
0: बिल्कुल खांडा फलसा मियाँ चौक जोधपुर से भी अब्दुल हमीद छिपा, रईसा बानो छिपा, अब्दुल मुसविर छिपा, आयशा बानो छिपा, अब्दुल अहमद छिपा और फिजा बानो छिपा ने फरमाइश की है।
1: वही एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम, बबीता, निखिल और तन्वी बोट की।
0: बिल्कुल, अगर आप भी हमें फरमाइश भेजना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9411323959। एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9411323959।
1: इसी के साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है yuvapasandjodhpur@gmail.com।
0: बिल्कुल, तो आप फटाफट से हमें फरमाइश भेजिए, हम आपकी फरमाइशों का इंतजार कर रहे हैं। और इन्हीं के साथ साथ आइए सुनते हैं पहले बताई गई फरमाइश वाला म्यूजिकल ट्रैक।

0: गीतों के बीच और साथ ही साथ जो फरमाइशी कारवा चल रहा है उसी में अगली फरमाइश आई है जेल रोड झांसी से महेंद्र कुमार, संदीप, नरेंद्र और कशिश डोमेन के।
1: बिल्कुल, और इनके साथ साथ रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशु गोस्वामी ने इसकी फरमाइश की है।
0: वही राजकोट से प्रेमा रानी, डॉली और सुरेश डोकर की। वही वीर मगाम गुजरात से प्रमिला राज और श्वेता राज सोनी की। वही मोरबी से प्रमिला जेटली, दीपक और आशु जेटली की।
1: बिल्कुल, और इनके साथ साथ मुकेश सुथार जो कि जोधपुर से हैं, इन्होंने भी इसी गीत के लिए फरमाइश की। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये म्यूजिकल ट्रैक।

0: मोहम्मद सलीम और निकहत परवीन की, वही उमर खेड़ से गिरधारी लाल और सरिता जाटव की।
1: बिल्कुल, इन्हीं के साथ साथ जोधपुर प्रताप नगर खोड़िया मंदिर से मनोहर सितारा, सरोज सितारा, पंकज और करण अर्जुन ने इसकी फरमाइश की है।
0: वही सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक, प्रमिला और अनुश्री सैनिकी, वही महादेव पारा से मीरा, सिमरन और योगेश कुमार की।
1: बिल्कुल, इन्हीं के साथ साथ भोपालगढ़ से किशन, आरती, जय किशन और विजय, सोनाक्षी और श्रीराम जानी ने इसी गीत की फरमाइश की। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये म्यूजिकल ट्रैक।

0: इस कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आप सुन रहे हो पसंद कार्यक्रम युवाणी, और फरमाइशों का सिलसिला चल रहा है। और इन्हीं के साथ साथ जो है अगली फरमाइश वो आई है जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ से, जो कि करी है सीधी पंजाब से ये आई है, और जो कि करी है अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, सना, समा, हीना, शकीला, जासमीन, राजिया, सुल्ताना, अख्तर अंसारी, सूरज अंसारी, मोहम्मद जावेद, और इन्होंने पूरे परिवार की तरफ से इस गीत की फरमाइश की है।
1: वही डुमरा बिहार से आसमा परवेन, दुखना रानी, सदफ, वल्ली भाई, और फिल्म सिटी मुंबई से इकबाल अफसरी मोगा और अहमद मोगा की। तो आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

0: दोस्तों अगली फरमाइश आई है बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी की।
1: बिल्कुल, और इन्हीं के साथ साथ भोपालगढ़ से राजेश देवराय, दिनेश चौहान, घनश्याम सिंह ने करी है। और वहीं देखा जाए तो वड़िंगखेड़ा से, पंजाब से जो है मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने भी इस गीत की फरमाइश की है। और इन्हीं के साथ साथ गांव मीठा तहसील सिंधरी से नाग सिंह, राजपुरोहित, तन्वी पुरोहित, कृष्णा ने इसी गीत की फरमाइश की। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये आखिरी म्यूजिकल ट्रैक।

0: बिल्कुल जी, इसी के साथ ही आज की शाम जो थी वो सारी शाम आपके हवाले ही थी, और आपने बहुत अच्छे अच्छे गीतों की फरमाइश की, बहुत अच्छी अच्छी फरमाइश से आपकी तरफ से हमारे पास आई। और फिलहाल समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आप सुन रहे थे युवा पसंद कार्यक्रम युवाणी, मैं था आपके साथ आपका रेडियो राहगीर रोहित, और मेरे साथ थी
1: आपकी रेडियो साथी हर्षिता टाक।
0: बिल्कुल आज के कार्यक्रम का संयोजन और प्रस्तुति करी थी राजेश लामरोड ने। दीजिए इसी के साथ हमें इजाज़त, नमस्कार।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम।

0: कि वो पानी। इस समय शाम के 6 बजे हैं। आयु सुने पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: सुनील काशीनाथ विधाते अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल, सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को।
2: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल।

0: अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
2: भारतीय सेना के अगले अधिकारी परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा,
3: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्य को भी मान्यता देते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन, रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और कल की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय पर।

श्रोताएं, पहले नज़र डालें हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय पर। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे खेल जगत, जिसे हम जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। चौपाल कार्यक्रम होगा आज शाम 7 बजे और शाम 7:30 पर सुनेगा कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज। सुगम संगीत सुनेंगे आज रात 9:15 पर। फिल्म संगीत सुनेगा हमारे स्थानीय केंद्र से आज रात 8 बजे, रात 9:30 पर और रात 10:30 पर। ये थे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में जानकारी। आइए अब नज़र डालें हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय पर। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस। कल आप सुनेंगे 42वां भाग।

आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज के मध्य द ओवल लंदन में खेले जाने वाले सेमीफाइनल मैच का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे कल शाम 7 बजे से, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे कल दिन में 2:30 पर। कल आप सुनेंगे इस कार्यक्रम की 1317वां भाग। सुगम संगीत सुनेंगे कल सुबह 10:30 पर, दिन में 12:30 पर। और लोक संगीत सुनवाएंगे हमारे स्थानीय केंद्र से कल सुबह 10 बजे और दिन में 12 बजे।

कुछ बातें कुछ गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 7 बजे। विभिन्न विषयों की रोचक जानकारी से भरा मनोरंजक कार्यक्रम नमस्कार सुनेंगे कल सुबह 8:30 पर। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवावाणी होगा कल शाम 5 बजे। महिलाएं अपना कार्यक्रम नारी वाटिका सुनेंगी कल दिन में 1:15 पर। किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम कृषि जगत होगा कल दिन में 1:05 पर। कल किसान भाई सुनेंगे चर्चा, मॉट की उन्नत खेती से लाभ प्राप्त करें। फिल्म संगीत सुनेगा हमारे किसान केंद्र से कल सुबह 6:45 पर और सुबह 11 बजे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आई सुने देशगान।

0: अभी आपने समूह स्वर में सुना देश गान। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6:20 हुए हैं। आइए सुनिए संस्कृत में समाचार जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने शौर्य पुरस्कारान् प्रायच्छत्। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेयः, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला आदयः च पुरस्कृताः। हरियाणा राजस्थानयोर्मध्ये दशकत्रये

0: gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन प्राप्तानां दानानां कथित वित्तीय अनियमिततानां विषये न्यायालयस्य निरीक्षणेन अन्वेषणं तथा फॉरेंसिक लेखा परीक्षणञ्च याच्यमानस्य पीआईएल इत्यस्य त्वरित विचारावेदनं निराकृतम्। न्यायमूर्ति एमएम सुन्दरेशः शीलनागोच अत्यावश्यकतायाः विषये प्रश्नम् अकुर्वन् ग्रीष्मकालस्य विरामस्यानन्तरं न्यायालयस्य पुनः उद्घाटनानन्तरं च याचिकायाः सूचीकरणं करणीयम् इति निर्देशमपि दत्तवन्तौ। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अद्य त्रिभाषा नीति विषये मार्गदर्शिका प्रसारिता। एकस्मिन् वक्तव्ये बोर्ड इत्ययम् अवदत् यत् साम्प्रतिकः दशमवर्गः नूतन भाषानीतेः अनुकरणं न करिष्यति इति। सप्त अष्ट नवेति वर्गेषु अध्ययनं कुर्वतां वर्तमानानां छात्राणां कृते एषा नीतिः अस्ति। अग्रिम वर्षादारभ्य एव दशमवर्गीय छात्रेभ्यो अपि तृतीय भाषायाः नीतिः अनिवार्या भविष्यति। सीबीएसई इत्यपि अकथयत् यत् सप्त अष्ट नवेति श्रेण्याः छात्राः ये पूर्वमेव विदेशीय भाषाद्वयं स्वीकृतवन्तः ते एकस्याः अतिरिक्तस्य देशीय भाषायाः अध्ययनं कुर्वन्तः तथैव अनुवर्तयितुम् अनुमताः भविष्यन्ति इति। सर्वकारेण जनविश्वास उपबन्धानां संशोधनम् इत्यधिनियमः 20-26 इत्यस्य माध्यमेन विधिमापन अधिनियमः 90-2000 इत्यस्यान्तर्गतं परिष्कार सूचना व्यवस्था प्रवर्तिता भविष्यति इति। दिल्लीति राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे एसआईआर इत्युक्ते मतदातृणां विशेष गहन पुनरीक्षण इति अभियानान्तर्गतं मतदातृभ्यः निर्वाचक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृह वितरणाभियानं स्वस्तनादारप्स्यते। देहलीनगरस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी अशोक कुमारः अद्य नवदेहलीनगरे प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् एतत् अघोषयत् यत् मतदान केन्द्रस्तरीय बीएलओ इत्याख्याः अधिकारिणः स्वस्तनादारभ्य अग्रिममासस्य 29-दिनांकपर्यन्तं कार्यमिदं सम्पादयिष्यन्ति इति। श्रीकुमारः अवदत् यत् अगस्तमासस्य 5-दिनांकात् सितम्बरमासस्य 4-दिनांकपर्यन्तम् अभियोगाः आक्षेपाश्च निवेदयितुं शक्यन्ते। अन्तिमा निर्वाचकसूचिः अक्टूबरमासस्य 7-दिनांके प्रकाशिता भविष्यति।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा।
0: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन स्वस्तनं यावत् उपहिमालयीय पश्चिम बंग क्षेत्रे सिक्किम प्रदेशे च प्रचण्डतः अतिप्रचण्ड तरायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। बुधवासरं यावत् अरुणाचल प्रदेशे, असम राज्ये, मेघालये, केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यतीत्यपि ऋतु विभागेन पूर्वानुमानं कृतम्। फीफा विश्वचषक क्रीडायाः नॉकआउट इति चरणे संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य लॉस एंजलिस नगरे प्रथमायाः नॉकआउट इति स्पर्धायां कनाडा देशः दक्षिण अफ्रीका देशं 1-0 पराजयत्। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदम्बि श्रीकान्तः यूएस ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान्।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय शाम के 6:30 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। शाम 6:42 पर जिले की चिट्ठी और शाम 6:47 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।
3: यमुना जल बंटवारे को लेकर नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच एमओए हुआ। इस ऐतिहासिक जल समझौते से 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। सीबी

0: सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी और दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल, जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन को लेकर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट एमओए किया गया। आज नई दिल्ली में ये एमओए राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच हुआ। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। एमओए पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि समझौते के तहत मॉनसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथिनी कुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। परियोजना के निर्माण के लिए करीब 3,900 करोड़ रुपए की लागत से हथिनी कुंड बैराज से चूरू तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे पेयजल के साथ ही सिंचाई के लिए पानी की सुविधा मिलेगी।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथिनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस दिन को भावनात्मक बताते हुए कहा कि ये केवल एक समझौता नहीं बल्कि लाखों परिवारों की बरसों पुरानी आशाओं, विश्वास और संघर्ष की जीत है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक कदम राजस्थान के विकास, जल सुरक्षा और समृद्ध भविष्य का नया अध्याय लिखेगा। इससे जल्दी ही धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। इस समझौते पर और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी।
2: यमुना जल समझौता राजस्थान और हरियाणा के लिए विन विन सिचुएशन और संवाद से समाधान का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। इस समझौते के बाद सीकर, चुरू और झुंझुनू तथा हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था होगी। इसके तहत जुलाई से अक्टूबर तक 58 करोड़ घन मीटर पानी यमुना नहर से 3 भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना पर 1994 में सहमति बनी थी, किंतु 3 दशक से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी इस पर कोई कवायद नहीं हो पाई थी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: शेखावाटी क्षेत्र की बरसों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में आज हुए एमओए से सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में खुशी का माहौल है। लोगों ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को बड़ी राहत देने वाला बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में वीर जवानों और सशस्त्र बल कर्मियों को असाधारण वीरता, साहस और विशिष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति भवन में हुए इस समारोह में मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले कई जाबाजों को मरणोपरांत भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम में विभिन्न खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया। करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई इन सुविधाओं में सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक और बास्केटबॉल कोर्ट भी शामिल है। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि कोटा बूंदी क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए वैश्विक स्तर की सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
3: कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में गांव में हो, शहर में हो, सभी जगह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित हो, इसके लिए कोटा शहर में चारों इलाकों में खेल सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बनाई है। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में जहां सिंथेटिक ट्रैक, वो बच्चा आज भी राजस्थान के अलग अलग राज्यों से यहां पर आता है और 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक में

0: वो एथलीट की तैयारी कर रहा है, लेकिन यहां बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते हैं और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रास्ता बने और इसलिए 900 मीटर का ये वॉक वे भी उनके लिए बना है।
1: श्री बिरला ने सियाम सभागार में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को भी संबोधित किया। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाने और नवाचार करने का आह्वान किया। राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज नई दिल्ली में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधा कृष्णन ने संसद भवन में इन्हें शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल है। राजस्थान से डॉ अलका सिंह ने भी आज शपथ ली। इस अवसर पर केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी उपस्थित रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं की वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों को भी 10वीं कक्षा में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि उन्हें एक अतिरिक्त भारतीय मातृभाषा का अध्ययन करते हुए अपनी विदेशी भाषाओं को जारी रखने की अनुमति होगी। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में आयोजित किया गया। बिड़ला सभागार में हुए इस समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा जगत के 276 दानदाताओं और प्रेरकों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री बैरवा ने दानदाताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि भामाशाहों की ये भावना समाज के प्रति उत्तरदायित्व और सेवा का प्रतीक है। इससे हजारों विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने में सहायता मिलती है। जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक दीवार ढहने से 3 मजदूरों की मृत्यु हो गई और 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा आज दोपहर में ताला मोड़ के पास एक होटल में बन रहे एसटीपी प्लांट की दीवार गिरने से हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए। जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल और जिला कलेक्टर संदेश नायक ने मौका मुआयना किया। मीडिया से बातचीत में श्री पटेल ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इसकी विस्तृत जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: कौन इसका जिम्मेवार है, किस हद तक जिम्मेवार है, वो जांच का विषय है और किस आदमी की वजह से, किस अथॉरिटी की वजह से दुर्घटना घटित की, इसमें लापरवाही किसकी है, इसकी हमारी जिला प्रशासन की ओर से इसमें इंक्वायरी भी बैठाई गई है। जैसी भी जरूरत पड़ेगी, पीड़ित परिवार की सहायता हो, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और ये भी हम प्रयास करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं घटित नहीं हो।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के आमेर क्षेत्र में दीवार गिरने से हुए हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। हालांकि मॉनसून के पहुंचने में हो रही देरी से अधिकतर हिस्सों में उमस का असर बना हुआ है। कुछ हिस्सों में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में मॉनसूनी गतिविधियां पश्चिमी भागों के मुकाबले अधिक सक्रिय रह सकती है। अगले कुछ दिनों में अलग अलग इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात का दौर जारी रह सकता है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और 2 से 5 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ और भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है।
3: दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून पूर्व की गतिविधियां जारी रहेंगी। कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में तेज

0: में गर्जन के साथ तेज हवाओं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में अगले 2-3 दिन अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तापमान भी 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हालांकि 30 जून और 1 जुलाई से उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती है।
1: केंद्र सरकार ने देश में स्वास्थ्य प्रणाली को काफी मजबूत किया है। इसके लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क के पहले बिंदु के रूप में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। सरकार ने बेहतर इलाज के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संबंध मजबूत किए हैं। देशभर में 23 नए एम्स और विशेष रूप से कम सुविधा प्राप्त और पिछड़े जिलों में 157 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यमुना जल बंटवारे को लेकर नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच एमओए हुआ। इस ऐतिहासिक जल समझौते से 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। और दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल, जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से डीग जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आरजू शर्मा ने तैयार किया है। डीग जिले में इन दिनों जनकल्याणकारी योजनाओं, कृषि, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, पर्यावरण और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रशासन विभिन्न योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास पर काम कर रहा है। आइए जानते हैं जिले की प्रमुख गतिविधियों के बारे में। राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर जिले में आमजन के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को रोटावेटर अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसानों को खेती की लागत कम करने और समय की बचत करने में मदद मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन शिविरों को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान भी शुरू हो गया है। अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों की आयु के 1,87,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पोलियो बूथों के अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष टीमों की तैनाती की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जिले में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान रैलियां, शपथ ग्रहण कार्यक्रम, जागरूकता संगोष्ठियां और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 16 जून से 31 जुलाई तक स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आशा सहयोगिनी और एएनएम कार्यकर्ता घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों वाले परिवारों का सर्वे कर रही है। परिवारों को ओआरएस और जिंक की दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही माताओं को डायरिया से बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी जा रही है। अभियान का उद्देश्य मानसून के दौरान बच्चों को डायरिया से सुरक्षित रखना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले में योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयुष विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर रैलियां और योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के अनुरूप लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया गया। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अनेक काम किए गए। विभिन्न स्थानों पर फार्म पौंड, रिचार्ज शाफ्ट और जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इन कार्यों का उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण और भूजल स्तर में सुधार करना है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान

0: के तहत जिले में उल्लेखनीय काम हुए। विभाग के अनुसार जिन क्षेत्रों में भूजल खारा है वहां फार्म पॉन्ड के माध्यम से वर्षा जल का संग्रहण किया जा रहा है। इससे खेती और बागवानी कामों को लाभ मिल रहा है। किसान सोलर पंप और ड्रिप सिंचाई पद्धति का भी उपयोग कर रहे हैं जिससे पानी की बचत हो रही है। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में डीग शहर में मालीपुरा रोड पर फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है। इस संयंत्र के माध्यम से घरों से निकलने वाले अपशिष्ट का उपचार किया जाएगा। इससे जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सड़क सुरक्षा को लेकर भी जिले में अभियान चलाया जा रहा है। डीग पुलिस द्वारा विशेष ग्राम गोद योजना के तहत गांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी दी जा रही है। साथ ही दुर्घटना में घायलों की सहायता करने वाले लोगों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की जानकारी भी दी जा रही है। भीषण गर्मी से राहत देने के लिए डीग शहर में इको कूलिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर आमजन को विश्राम, शीतल पेयजल और ओआरएस की सुविधा उपलब्ध होगी। इन केंद्रों में प्राकृतिक वेंटिलेशन और सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जाएगा। बीते दिनों जिले में मौसम में बदलाव देखने को मिला। हाल ही में बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई स्थानों पर तेज हवाएं और वर्षा भी दर्ज की गई। बारिश से किसानों में उत्साह का माहौल है। उनका मानना है कि इससे खरीफ फसलों की बुआई और उत्पादन को लाभ मिलेगा। इसी के साथ डीग जिले की चिट्ठी यहीं समाप्त होती है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंचाई बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, यमुना जल बंटवारा ने लेर नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच MOAVO ई ऐतिहासिक जल समझौता 3 दशक पुरानी समस्या रो निपटारो वेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार दिया। CBSE 10वीं कक्षा रा चालता बैच ने त्रिभाषा नीतियों छूट दी और दिखनाद आथोनी मानसून रे प्रदेश में आवन सारू परिस्थितियां अनुकूल, जुलाई रा पहला हफ्ता में पुगण रा आसार। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह। अरबे समाचार विगतवार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज यमुना जल परियोजना ने बनावण और लागू करण ने लेर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट MOA करीजियो। आज नई दिल्ली में ओ MOA राजस्थान और हरियाणा सरकार रे बीच वियो। मीटिंग में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल मौजूद रिया। MOA माथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दस्तखत करया। ई मौके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कयो के करार रे तहत मानसून रे दौरान राजस्थान रा हकरो पानी भूमिगत पाइपलाइन री मार्फत हथिनी कुंड बेराजो सप्लाई करियो जायला। परियोजना री बनाई चुनाई सारू कोई 3,900 करोड़ रुपया री लागत हथिनी कुंड बेराजो चूरू ताई पाइपलाइन बिछाई जायला। एणु पीवण रा पानी रे साथ ही पाणत सारूई पानी री सुविधा मिलेला।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ई दिन ने भावनात्मक बतावता कहो कि ओ फगत एक करार नहीं है बल्कि लाखों पिरवाना रे साला पुरानी आस, विश्वास और संघर्ष री जीत है। वणा कहो कि ओ ऐतिहासिक कदम राजस्थान रा विकास, पानी री हिफाजत और समृद्ध भविष्य रो नुओ पाठ लिखेला। एणु बेगाई जमी माथे काम शुरू वे जायला। ई करार माथे और जानकारी दे रिया है मारा खबर नवीस जितेंद्र द्विवेदी।
3: यमुना जल समझौता राजस्थान और हरियाणा के लिए विन विन सिचुएशन और संवाद से समाधान का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। इस समझौते के बाद सीकर, चुरू और झुंझुनू तथा हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था

0: व्यवस्था होगी। इसके तहत जुलाई से अक्टूबर तक 58 करोड़ घन मीटर पानी यमुना नहर से 3 भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना पर 1994 में सहमति बनी थी, किंतु 3 दशक से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी इस पर कोई कवायद नहीं हो पाई थी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: शेखावाटी हलकारी बरसा पुरानी पीवण रा पानी री समस्या रा निपटारा कानी आज व्यो एमओए रे पछे सीकर, चूरू और झुंझुनू जिला में खुशी रो माहौल है। लोगा इन महत्वाकांक्षी परियोजना ने मोटी राहत देवन वाली बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रक्षा अलंकरण जलसा रा दूजा चरण में वीर जवाना और सशस्त्र बल कर्मिया ने असाधारण वीरता, साहस और ठावी सेवा में सारू इनाम दिया। राष्ट्रपति भवन में व्या ई जलसा में मातृभूमि री हिफाजत में ठावो बलिदान देवन वाला कई वीरा ने मरण रे पछे सम्मानित करी जिया। ई मौके उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सशस्त्र बलारा ठावा एहलकारी मौजूद रिया। वो सम्मान देश री आतंकवाद, उग्रवाद और सरहदी हल्का में चुनौतियां रे खिलाफ बरोबर लड़ाई ने दर्शावे है। साथ ही विमानन, समुद्री अभियाना और मानवीय मिशना में दिखाई जी असाधारण बहादुरी ने मान्यता दी जावे है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटारा श्रीनाथपुरम स्टेडियम में न्यारा न्यारा खेल सुविधाओं रो लोकार्पण करियो। कोई 4.5 करोड़ रिपेयर लागतों विकसित करी जी आ सुविधाओं में सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक और बास्केटबॉल कोर्टी बेड़ा है। ई मौके श्री बिरला कहो कि कोटा बूंदी हल्कारा खिलाड़िया सारू वैश्विक थरी सुविधा देवन री कोशिश करी जावे।
2: कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में गांव में हो, शहर में हो, सभी जगह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित हो, इसके लिए कोटा शहर में चारों इलाकों में खेल सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बनाई। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में जहां सिंथेटिक ट्रैक, वो बच्चा आज भी राजस्थान के अलग अलग राज्यों से यहां पर आता है और 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक में वो एथलीट की तैयारी करता है, लेकिन यहां बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते हैं और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रास्ता बने और इसलिए 900 मीटर का ये वॉक वे भी उनके लिए बना है।
1: श्री बिरला श्याम सभागार में प्राकृतिक खेती माते वीर राज्य थर्री कार्यशाला में भाषण करियो। वना काश्तकारों प्राकृतिक और जैविक खेती ने अपनावन और नवाचार करने की अरज करी। राज्यसभा 8 नुआ चुनी जा सदस्य आज नई दिल्ली में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन संसद भवन में आने शपथ दिराई। आ सदस्य में कर्नाटक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भेड़ा है। राजस्थान डॉक्टर अलका सिंह आज शपथ ली। ई मौके केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, ठावा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आज त्रिभाषा नीति माथे दिशा निर्देश काढ़िया। बोर्ड कहो के कक्षा दसवीं रा अबारा बेस ने नवी भाषा नीति री पालना नहीं करनी वेला। बोर्ड ओई कहो के सातवीं, आठवीं और नवी कक्षा माए पढ़ रिया पढ़ेसरा ने ही दसवीं कक्षा माए पुगण माथे तीजी भाषा माए बोर्ड परीक्षा देवन री जरूरत नहीं वेला। बोर्ड कहो के वाने 1/32 भारतीय मातृभाषा माए पढ़ाई करता आपरी विदेशी भाषा ने चालती राखण री मंजूरी वेला। तीसवा राज्य थर्रो भामाशाह सम्मान जलसो आज जयपुर माए राखी जो। बिड़ला सभागार में आविया ई जलसा में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा जगत रा 276 दानदातावा ए प्रेरका रो सम्मान करियो। जलसा में बोलता श्री बिड़ला दानदातावा री सराहना करता कहो के ओ समाज रे प्रति उत्तरदायित्व और सेवा रो प्रतीक है। इणु हजारों पड़ेसरा रा सपना पूरा करण में मदद मिले है। केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य प्रणाली ने घनी मजबूत करी है। इस सारू करड़ी कोशिश करी जी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कहो के सरकार पहला, दूजा और तीजा थरी स्वास्थ्य सेवाओं रो पसारो करियो है। श्री नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद रा सम्मेलन में बोल रहा है। वना कहो के रहवासियां और स्वास्थ्य प्रणाली रे बीचे मेलू पहला बिंदुरा रूप में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मिंदर

0: स्थापित करी जा है। सरकार चोखा इलासारू प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं रे बीच तालमेल मजबूत करियो है। देश भर में 23 नुआ एम्स और खास तौरू कम सुविधा वाला और पिछड़ा जिला में 157 बत्ती मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ ही तीजा थर्री स्वास्थ्य सेवाओं ने मजबूत करिया है। जयपुर रा आमेर हल्का में एक दीवार ढह जावणु 3 मजूरा री मौत वेगी ए 3 लोग घायल हुआ। घायला ने एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जा है। हादसों आज दोपहरा ताला मोड़ कने एक होटल में हुआ। एसटीपी प्लांट री दीवार पड़ जावणु वियो। सूचना मिलता ही पुलिस और प्रशासन कानियों राहत और बचाव रा काम शुरू करी जा। जिला प्रभारी मंत्री जोकाराम पटेल और जिला कलेक्टर संदेश नायक मौका रो मुआयनो करियो। मीडिया साथे बदल में श्री पटेल हादसा ने दुखदायी बतावता कहो कि इनरी विगतवार जांच करार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जायला।
1: कौन इसका जिम्मेवार है, किस हद तक जिम्मेवार है, वो जांच का विषय है। और किस आदमी की वजह से, किस अथॉरिटी की वजह से ये दुर्घटना घटित की, इसमें लापरवाही किसकी है, इसकी हमारी जिला प्रशासन की ओर से इसमें इंक्वायरी भी बैठाई गई है। जैसी भी जरूरत पड़ेगी, पीड़ित परिवार की सहायता हो, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें कोई कोताही नहीं बरत जाएगी। और ये भी हम प्रयास करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं घटित नहीं हो।
0: राज्यपाल हरिभाव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रा आमेर हल्का में दीवार ढह जावणु हुआ हादसा रे माथे गहरो शोक जतायो है। और अब मौसम। राज्य में दिखणाद आथोणी मानसून आवण सारू परिस्थितियां बरोबर है। फिर वही मानसून रे आवण में भी देरियो घणकरा हल्का में उमस रो असर बण्योड़ो है। कुछ हिस्सा में मानसून पेलेरी गतिविधियां बण्योड़ी है। मौसम महकमा मुजब अगुणी राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां दिखणाद हल्का रे मुकाबले बत्ती सक्रिय वह सके है। आवता कुछ दिना में न्यारा न्यारा हल्का में गरज चमक और तेज बायरा रे साथे हल्क्यू मजला दर्जारी बरसात रो दौर चाल सके है। दिखणाद अगुणी और अगुणी राजस्थान रा कुछ हल्का में 2 जुलाई बिरखरी गतिविधियां में बढ़ोतरी होवर और 2-5 जुलाई रे बीच अगुणी राजस्थान रा कुछ हल्का में बिरखरी गतिविधियां में बढ़ोतरी री आस है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा बतायो कि ई दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कठे कठे भारी बिरखा वह सके है।
2: दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून पूर्व की गतिविधियां जारी रहेंगी। कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में तेज मेघ गर्जन के साथ तेज हवाओं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में अगले 2-3 दिन अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तापमान भी 42-44 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हालांकि 30 जून और 1 जुलाई से उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती है।
0: देश भर में आज संत कबीरदास की जयंती मनाई जावे। वे भक्ति कालरा महान संत और कवि हा। वना जीवन भर सामाजिक बुराइयां, अंधविश्वास और आडम्बर के खिलाफ आवाज उठाई। वारा दुआ आज सही जीवन जीवन रो मार्ग दिखावे है। कबीर जयंती के मौके आज पाली माए शोभा यात्रा निकाली जी। अब आखिर माए खास समाचार आप एक कर फिर सुन दे रहो। यमुना जल बंटवारा ने लेर नई दिल्ली माए राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच MOAVO ई ऐतिहासिक जल समझौता 3 दशक पुरानी समस्या रो निपटारो वेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली माए वीरता पुरस्कार दिया। CBSE 10वीं कक्षा रा चालता बैच ने त्रिभाषा नीतियों छूट दी। और दिखनाद आथोणी मानसून रे प्रदेश में आवण सारू परिस्थितियां अनुकूल, जुलाई रा पहला हफ्ता में पुगण रा आसार। इन रे साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 7 बजे हैं। आइए सुने हमारे दैनिक कार्यक्रम चौपाल। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम चिरमी।
1: गांव ग्वाड़ अर खेत खलियानरी बात मीडियम वेव 564.97।

मीटर यानी 531 किलो हर्स। सिंजिया 7 बजिया सुनना ना भूलो आप पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

लोसा हाजिर है राजस्थानी गीतारो फरमाइशी कार्यक्रम चिरमी। चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत हर सोमवार सिंजिया 7 बजिया आप सुन सको हो आपरो पसंदीदा फरमाइशी कार्यक्रम चिरमी। कार्यक्रम सुनना सगला हेतालु श्रोताओं

राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथ है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई पड़ोदी सु ईमेल भेजियो है सुभाष लेखावत और कागज माने कन आयो है जोधपुर सु लिखियो है रघुवीर किशोर देवेंद्र सिंह जबर सिंह खींची और रतन सिंह खींची ओ ईमेल आयो है चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सु भेजन वाला है दिनेश सोडा रुद्राक्ष सोडा भव्यांश रमनदीप और राम किशोर और कागद आयो है इंदिरा कॉलोनी महा मंदिर सु श्याम डागर राजेंद्र गोपाल मरेठा रमेश सांखला जीतू बाडुलिया नंदू भाई बगलू राम गहलोत और आणा घना सारा साथी पांचला खुर्द सु ईमेल भेजन वाला है दौला राम बेनीवाल खारिया खुर्द आडेल बाड़मेर सु कमरा राम सतीश सारण सारो देवी और चंद्रिका गांव कंटालिया सु भीखाराम मौर्या सीता देवी मौर्या विजय प्रकाश गोमती माणकचंद मंजू देवी जयेश और मनीष मौर्या थिंसर नागौर सु कल्याणमल प्रभुराम वंशीलाल हेमाराम शोभाराम मौर्या और आणा सगला साथी गांव पावना सर जैसलमेर सु जितेंद्र पवार गुलाब पवार तेजपाल नेपाल पवार पारस पवार गोविंद पवार गौतम पवार गांव मेलाना सु छैलाराम मेघवाल रविन्द्र देवेंद्र अनीता और फूली देवी मेघवाल रमेश चंद्र चौहान मोहनी चौहान कल्पित चौहान बेबी गर्वी और आणा घराला माने ईमेल भेजियो है कुड़ी हाउसिंग बोर्ड सु गांव जैसला तहसील फलोदी सु राजा राम जंवर और आणा साथी तो साथिया सुना आप सबारी पसंद माते आ रचना।

राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथ है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई। ओ ईमेल आयो है धन्य की ढाणी तहसील सिंह धरीसू गणेश तरड़ चेतन गिलकी प्रमोद पारसी ममतेश मोहनलाल तरड़ और विकास तरड़ रो। मलोट कैंप पंजाब सू माने कागज लिखियो है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया और आना सगला घर वाला। और ईमेल आयो है गांव बीकम कोर सू गौतम परिहार अरविंद परिहार सोहन परिहार आरती दुर्गा मंजू संगीता कुलदीप हंसपाल और ओम प्रकाश परिहार। और ईमेल आयो है गंगा सिंह का खेड़ा भीम सागर सुजानगढ़ सू लिखियो है मदन सिंह राठौड़ और आना सगड़ा घरवाड़ा। गांव खारा बेरा भीमावता सुमाने कागज लिखे माना नियमित श्रोता है राजू राम सेन पद्मा सेन और प्रतिज्ञा सेन। आगलो कागज है गांव छापला सु मांगीलाल सीताराम सुरेंद्र कुमार खुशबू और विद्या देवीरो। और ईमेल माने कनायो है सादुल शहर जिला श्री गंगानगर सु लिखण वाला है राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ और आना सगड़ा साथी। आगलो ईमेल आयो है भोपालगढ़ सु घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित चौधरी। गांव खोखरा मारवाड़ जिला पाली सु कागज लिखे है सोहनदास वैष्णव लक्ष्मण दास युवराज खुशवंत भंवरदास ओम प्रकाश कालूदास विद्या देवी महिमा गुंजन और आना सगला घर। आऊ फलोदी सु माने कागज लिखे बिकम चंद टाटिया संतोष टाटिया मनोज सुरेश खुशबू सपना धनी और भूमि। मथानिया सु भगराज वर्मा बेबी वर्मा हनुमान मदन और गोविंद सुथार। बिरे सु रतना राम उदयनिया मेहराम उदेणिया गुलाब राम और आणो सगलो परिवार। बदवासिया सु पारसमल खटनवालिया अशोक खटनवालिया जयराम और आणा सगला साथी। खारड़ा भारत सिंह सु खरता राम माचरा भैरा राम रेखा राम माचरा उमेदा राम चेतन भोम सिंह और आणा सगला साथी। तो साथिया सुना आप सबारी पसंद माते आ रचना।

राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथ है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई। आगलो कागद है गांव छापला सु मांगीलाल सीताराम सुरेंद्र कुमार खुशबू और विद्या देवी रो। पवनपुरी बीकानेर सु भंवरलाल सोनगरा गीता रानी सोनगरा डॉक्टर सोनू दाईमा सरोज सत्यनारायण दाईमा अखिल मूलचंद सोनगरा सुनीता प्रथमराज हंसराज कृष्णा मुकेश सावित्री अंजलि अनुष्का लक्षिता अमीशा सोनगरा और अठेसुई आशीष जतीन और आना सगला घराला। सादुल शहर सु ओम प्रकाश चौहान मन्नू प्रकाश शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। गांव कुड़ी सु ठाकुर रूप सिंह कुंवर दिग्विजय सिंह मंजू कंवर सोडा मुमल कंवर और अन्नपूर्णा कंवर। अमरखेड़ महाराष्ट्र सो ओ कागद लिखियो है अभिजीत ग्वाणकर सरिता ग्वाणकर सिद्धांत प्रिंस और एकांश ग्वाणकर। ओ ईमेल माने कने आयो है अनारकली बाजार पंजाब सु लिखियो है सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा आशीष बेबी गव्या और जयपाली यादव। गांव धुंधाड़ा सु गणेश मेघवाल चंपा मेघवाल मधुबाला विवेक और आना सगड़ा साथी। आगलो कागद है गांव अरनियाली धोरी मीना बाड़मेर सु लिखन आला है फरसाराम खत्री भवानी शंकर खत्री पंकज खत्री रेखा निर्मा किरण सूरज शारदा भाग्यश्री हार्दिक खत्री और आनो सगलो खत्री परिवार। और कागद आयो है फाजिलका सु लिखियो है भूषण विशाल शालीन खेड़ा आरबी खेड़ा जीवन सिंह बुक और खेड़ा परिवार। गांव चाड़ी सु उत्तम चंद छाजेड़ राणूलाल छाजेड़ शांतिलाल छाजेड़ कमला देवी छाजेड़ और आनो सगलो परिवार। गांव केलवाद सोजत सु ओ कागद लिखियो है सुरेश मेघवाल मंजू निशा और कृष्णा मेघवाल। कागद आयो है मलोट कैंप पंजाब सु सतीश मेघलानी सीमा शाइना विशाल मेघलानी सुप्रिया अनमोल धर्मपाल महावीर और रमेश मिगलानी रो। तो साथ यहाँ सुना आप सबारी पसंद माते आ रचना। अरे आमद चले पर

अबार आप सुनियो राजस्थानी लोक गीता रो फरमाइशी कार्यक्रम। अब कार्यक्रम रो बगत हो रियो है पूरो, तो आप रे साथी गुरविंदर बिश्नोई ने अनुमति दिराओ। राम राम अर नमस्कार।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोता भी आप सुन रहे थे चौपाल कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे फरमाइशी राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम चिरमे। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। श्रोता, इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। आइए सुने हमारे दैनिक कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

ફાટક આવો પગે લાગ્યા.

0: अगजी आज काम करियो तक जी अगजी तपे कदो तो मैं नहीं वे जो कह नहीं के भाई हालत खराब हूँ
1: तावड़ो
0: ही घड़ो ही पड़े आन भाई है जो कह नहीं हल्द गर्मी होड़ी बरसात आवे नी आन ओ कटे पो कह नहीं धरती रे के खोने में जुल्म का
1: आपा नवलाबा देखो नी ए कही है अपन जिन देश में रह रहे हैं जिन जगह रह रहे हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहवे
0: है उष्ण।

0: उष्ण कटिबंध क्षेत्र एमे कई हुआ नवलाबा कई हारी विशेषता है में जिका पर रह रहे नी
1: पर हो एरियो नी
0: हाँ आप जिका जटे भी रह रहे देश में तो इमे के जो
1: तावड़ो
0: घणो पड़े है जो तापमान होवे नवलाबा वो 20 डिग्री 30 डिग्री तक रहे ठीक है इमे गर्मी सर्दी में ज्यादा अंतर भी नहीं रहे इमे कई है की जो साल में कम कम एक बार जो गर्मी है सूरज की किरण है नी सीधे सर माते रहे
1: अरे एकदम माते माते आवे कह दियो नी अपर तो मैं धोरा धरती है जी को भाईओ दिया है
0: जंगल भी घना रहे हुए उमस भी घनी रहे
1: हुए
0: सब है नवलाबा
1: तेरी घनी लागे कह दिया थाने पूरा
0: सार में नवलाबा एक बात क्यों नहीं आपने तो एक गीत सुना दूं उनमें आपने पूरा ठा पड़ जाए कि कई है सर्दी गर्मी है कई है तीन छिंतरी रहे
1: हो गीतों हम जाओ
0: पूरा गीत
1: बातों थानू हम जाइए कोई
0: गीतों तो मजे मजे थे हूणों ने बच्चे
1: हाँ हसी बात है भाई थे तो हम कह नहीं के जानकार हो भाई
0: जानकारी बार नहीं नवलाबा देखो गीत मीन वस्तु बनाए
1: ओहो ठीक ठीक तो होना
0: नवलाबा हूणो।

0: वाह भाई रे उंगली हो गया सर्दी गर्मी बरसात हैंगते ऋतुआ है हमें विगत बार मैंने तो कह नहीं थे ज्ञान बता दो आज रो कौन जलमियान कौन फोत होया तो मारू कह नहीं भाई थोड़ी गणी के कह कह बा मंदरी हुसनी बा पूरी हो जाए
1: ठीक है नोला बा पहला जी के जन्म होना बात करा एक है पीसी महाल नोबिस यहाँ पूरा नाम है प्रकाश चंद्र महाल नोबिस आज दिन 1853 जन्म लिया और भारत रा मान सांख्यविद और वैज्ञानिक रिया भारत जी की दूसरी पंचवर्ष योजना है नवलबा और उनमें औद्योगिक उत्पादन की करो हुआ उन्हें बढ़ोतरी वास्ते रूपरेखा तैयार करी
0: ठीक ठीक है गणित जोड़ा हो
1: हाँ गणित जोड़ा योगदान वास्ते बेरोजगारी और जो की भी सामाजिक कुरुते हैं सामाजिक जो आर्थिक गरीबी में हुए नहीं उनके ऊपर उत्थान हुआ की कर देश प्रगति करे
0: संख्या है जो जोड़ बाकी गुणा भाग करे और बताओ भाई तरक्की की करोनी
1: चाहिए यानी इन्हीं योगदान के कारण देश में आप सांख्यिकी दिवस भी घोषित करियो
0: आज दिन है नी
1: हाँ नोला बा
0: आंकड़ा हैंग ठा पड़ जा
1: हाँ
0: ठीक ठीक ठीक तो कह देखो आज इन दिन री मुबारकबाद है रानी कोटि कोटि नमन है मंदरेरा फूल चढ़ाओ
1: हाँ
0: बड़े
1: बड़े है आशुतोष मुखर्जी याना जन्म आज दिन 1864 कलकत्ता में यो ए भी महान शिक्षाविद और बैरिस्टर में रह चुका है और कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके हैं
0: ओ ठीक ठीक है भाई गुणी विद्वान मिन घा और आप रिटोड़ मासो को काम करियो
1: समाज सुधारक और स्वाच उतरे भी दूर रहे
0: समाज है जो क्या नहीं उदार तो हुई है तो आनी पर बते पर धोक देवा कोटी कोटी नमन करा मन रेरा फूल चढ़ाओ बड़े
1: बड़ा जगह फौत होने बात करा एक है माइकल मधुसूदन दत्त आज दिन 1873 में फौत हुआ आधुनिक बंगाली साहित्य का प्रथम महान कवि और नाटककार भी है बंगाल का पुनर्जागरण में प्रमुख स्तंभ एक है
0: ठीक ठीक ठीक जागरण जगह उनमें है जिसको बेला
1: हाँ पुनर्जागरण
0: आने कोई बात क्या नहीं कोई नहीं भूल सके कोटी कोटी नमन है मंदरेरा फूल चढ़ावा बड़े
1: बड़े दामोदर धर्मानंद कौसाम्बी आज दिन 1966 में पुणे में फोत हुआ भारत का मान गणितज्ञ इतिहासकार और राजनीतिक भी रिया
0: वाह भाई वाह कह नहीं बहुगुणी मिन्न खा
1: मार्क्सवादी विचारक रहा
0: आप रखा नहीं कि भाई देखा काम करिया मान लाल पैसा छोड़ दिया
1: हाँ नोलबा
0: तो कोटी कोटी नमन है मंदरेरा फूल चढ़ाओ बड़े
1: बड़े सरदार बलदेव सिंह आज दिन 1961 में फोत हुआ भारत का मान स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख शिक्षक नेता भी रिया
0: ओ ठीक है भाई देखा के देश की आजादी सिपाही हाँ अत्याचार जुलम सहन करिया अपने आजादी दिलान किया
1: भारत रक्षा मंत्री भी रह चुके पहला
0: तो भाई पहला पहलो पहल है जिसको रक्षा मंत्री रिया
1: हाँ
0: तो आने कोई नहीं भूल सके सरदार बलदेव सिंह जी ने कोटि कोटि नमन हनुमन रेरा भूल चढ़ाऊ बड़े
1: बोले के जी सुब्रमण्यम आज दिन 29 जून 2016 में फोत हुआ भारतीय मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार

0: ओ ठीक है, चित्रा बड़ा अवतार, मूर्तियां बड़ा अवतार।
1: हाँ, बीती चित्रकार में टेराकोटा नहीं, टेराकोटा यानी प्रमुख विशेषता रही, और कई हारा खिलौना भी बनाया है।
0: बढ़िया सा देखो, आप भी कह नहीं के जी को हुनर हो, उन्हें जी को कर्म किया
1: हाँ
0: तो आज ही मारा निशान पड़िया है,
1: हाँ
0: तो आने कोटि कोटि नमन है, मंदड़ेरा फूल छाऊ भले।
1: बड़े गौरी देवी आज दिन 1988 फोत हुई है, राजस्थान री लोक गायिका रही
0: गौरी देवी। हाँ भाई,
1: है नी।
0: गौरी देवी दो, हाँ एक तो गौरी देवी हाँ, एक गौरी देवी राव।
1: हाँ
0: तो राव तो हमार कह 15 दिन पहले ही फोत होया,
1: हाँ
0: और ए थेट कह नहीं खासा बर पहला होगा।
1: पहले हो गया।
0: तो दो ही है जी को मांड कलाकार हा,
1: हाँ
0: और दो यारी बात मोटी ही ने अपने कह नहीं, संस्कृति ने कह के और लोक संस्कृति ने आगे बदया।
1: राजस्थान री मरु कुकिया कहता है
0: तो
1: यार।
0: किला सा तो आनी है जी को कोई नहीं भूल सके, कोटि कोटि नमन करा, मंदड़ेरा फूल चढ़ावा। ए गौरी देवी जी है जी को आरो, एक कोई दो आंकड़ी रो कोई गायड़ो गीत रो होना होगा।
1: हाँ नोला बाबा होना।

0: वाह भाई वाह, मैंने न्याल कर दिया तो ही गौरी देवी ने है जी को कह नहीं मंदिर रापा फूल चढ़ा दिया। भले
1: भले मेहता लज्जा राम शर्मा आज दिन 1931 में फोत हुआ, हिंदी भाषा पत्रकार और साहित्यकार है और 23 ग्रंथ री रचना करी जिनमें 13 उपन्यास हरिया और मुंबई रा वेंकटे समाचार संपादक भी करिया।
0: वाह तो कह नहीं आप री ठोड़ माते मोटी सेवा करी।
1: हाँ
0: और मोटी सेवा रा कह नहीं मोटा नाम है।
1: हाँ नोलबा
0: नहीं कोई नहीं भूल सके, कोटी कोटी नमन है मंदिरेरा फूल चढ़ावा।
1: हाँ नोलबा
0: और देखो मैं भाई अगर जी थे आया तो बेड़ू बढ़िया हो बेड़ू हेड़ू करावा थाने हैंग बात हो पर एक थारे खून कुड़िया में कोई जिसी हो गया तो मैंने सुना दो थोड़ा कोई गीत कह मारो जी हो जाओ।
1: हाँ नोलबा

0: जी वाह मैं हैं क्या नहीं के थे आई गया बक जी मने ले लियो थे बकड़ी में
1: कदे कदे आओ थन मैं बकलो
0: नहीं नहीं आओ की कौन मारे बे चीज बुस मंगेड़ी जी कोई है जी को लेता आओ ता तो ठीक ही और बाकी बीच बाज है लायोड़ा पड़िया है
1: तो आम रो मौसम चल रहा खत्म होने वाला आम बारिश आते तो नाम लाए गण सर
0: वाह बढ़िया करियो भाई लाया तो नियाल कर दिया बेटा कह नहीं की मैं ही छू ले हमें एक बात है हुड़ा पहाड़ी करियोड़ा त्यार बेटा बाढ़ काटा ही कर दिया हमें भाई बर जा मैं उड़ लो तो
1: बर जाए बर जाए चिंता मत करो
0: मैं धाम जा काटा हूँ
1: चिंता मत करो
0: क्या नहीं ऊंचे अंग्रेजा क्या करता ना अंग्रेज देखो मैं मत मजा रहे मैं हो तो देखो मजूरी सौखी है
1: सही बात है
0: और देखो क्या नहीं मैं माता कह भाई अपन धान सोनी हो जा चारों कुछ हो जा नहीं तो भाई है पानी यारी है मुसीबत हो जाए
1: मुसीबत हो रही है चिंता मत करो
0: मत हो जाए तो कह भाई देखो निहाल हो जावा नहीं तो कह कई सपना सकना सूर हो जाए
1: हो जाइए
0: ये बात है सपनों कह नहीं अपन पूरा हुए और हैंग बात भली हुए तो मैं अग जी थे रसोड़े में थोड़ी घर दो हूँ फेर दू माड़ा और देखो मैं माड़ा फेर बैठो हूँ जिसे थे कह नहीं कह बैलू की तैयारी कर दो और मैं तारा ही खासा ऊंचा आएगा है और कह नहीं अंदाजी हुई पड़को है और प्रोग्राम टाइम भी वह है पूरा तो भाई सुनो ले वही राम राम
1: राम राम।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिमाड़े री गूंज। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर।

मीडियम वेब 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोता इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म कभी खुशी कभी गम के इस दो गाने के साथ, आवाजें अलका याग्निक और सोनू निगम की।

सोनू निगम और अलका याग्निक की युगल आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म बॉर्डर का ये दो गाना, जावेद अख्तर के बोल थे और अनु मलिक का संगीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। आए सुने फिल्म सिर्फ तुम का ये गीत। अमीन साबरी, फरीद साबरी, जसविंदर नरूला और साथियों की आवाजों में ये गीत, समीर के बोल और नदीम श्रवण का संगीत।

0: शान के गाए फना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। रात्रि के 8:45 हैं। आए सुने पहले समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज़ एट 9, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सशस्त्र के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस

0: एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफार्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: applications launch is going to play a very important role.
4: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहले शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है।

0: और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
1: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
2: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है, जो पहले दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केन्द्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
3: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
4: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
3: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
2: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewZone AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच

0: हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रूपये पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रूपये के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at defense investiture ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. And now the news in detail. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of Armed Forces, were also present on the occasion. A report.
3: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshney and Vice Admiral Anand Vaisardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor, and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh, and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included

गुलाम मलिक की गाइस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोता, इस समय रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सुना फिल्म नगीना का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। तेरी मेहरबानियाँ से आइए अब सुने सब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की गुलाबाज़ों में ये गीत। SH बिहारी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

रेशमा की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे हीरो फिल्म का ये गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सोनू निगम की आवाज़ में आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म साथिया का ये गीत, गुलजार के बोल और ए आर रहमान का संगीत।

लता मंगेशकर और सबीर कुमार की गाए फिल्म गुलामी के इस दो गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम श्रोता हूँ अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम खेल जगत।

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं फुटबॉल खिलाड़ी मयंक खंडेलवाल से शिव कुमार शर्मा की गई बातचीत। ये आकाशवाणी केंद्र अलवर का अंशदान है।
1: श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं उस खेल की जो जुनून, जोश और टीम भावना का प्रतीक है, लाखों दिलों की धड़कन है, जहाँ हर गोल के साथ उम्मीदें उड़ान भरती है। हम बात कर रहे हैं फुटबॉल की। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी जिन्होंने अपने खेल, मेहनत और लगन से अपनी खास पहचान बनाई। हमारे साथ हैं मयंक खंडेलवाल, जो संतोष ट्रॉफी के लिए खेल चुके हैं। मयंक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए सर।
1: तो पहला सवाल तो हमारा यही है कि आपने फुटबॉल खेल की शुरुआत कैसे की?
2: सर, ये बात है, जब मैं पहली बार मैंने स्कूल चेंज करके मैं एक नए स्कूल में गया था, वहाँ पे जो मेरे कोच हैं, जो आज तक मेरे कोच वही रहे हैं, उन्होंने गेम्स पीरियड में मुझे पहली बार फुटबॉल की कुछ ड्रिल्स सिखाई, और वो ड्रिल्स करके मुझे जो इंटरेस्ट उस गेम में आया उस दिन, वो आज तक कॉन्टिन्यूस आ रहा है। उसके बाद मैंने उनसे बात करी कि सर और आगे खेलना है तो क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाएंगे स्कूल की, तो उसके लिए आप ट्रायल दीजिए उसमें। मैंने वो ट्रायल दिया, मैं उसमें सेलेक्ट भी हुआ, और सेलेक्ट होने के बाद सर ने कॉन्टिन्यूस लगातार मतलब 4-5 महीने हम लोगों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाई, और उसके बाद फिर हमें डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेलने लेकर गए। वो पहली बार था जब मैंने कोई एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट खेला था। सर ने बहुत

0: से प्रैक्टिस कराई थी, बट स्टिल उसके बाद भी हम वो मैच, पहला मैच हम हार गए थे
1: जी। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट कहाँ हुआ था?
0: ये डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट गांव में हुआ था, एक खेडली करके गांव है, वहां पे वो पूरा गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करा रखा था, और वहां पे अलवर शहर के और अलवर शहर के स्कूलों के नाना करते हुए भी 10 से 20 टीम्स वहां पर गई थी। उन सब ने वहां पे एक दूसरे के अगेंस्ट खेल के, और वो पूरा टूर्नामेंट था।

0: के बाद और कुछ, दुनिया सब खत्म हो जाती है, सिर्फ वही है, वो बॉल होती है उस वक्त, और आपके साथ के जो लोग होते हैं जिनके साथ आप खेल रहे हैं, बस उनके अलावा आपको और कुछ नहीं दिखाई देता है
1: जी। अच्छा, जब आप खेल की तरफ उन्मुख होते हैं या खेल की तरफ ध्यान देने लगते हैं
0: जी।
1: तो जो घर परिवार के लोग हैं वो भी सोचने लगते हैं कि ये खेल पर ज्यादा ध्यान दे रहा है या पढ़ाई कम कर रहा है,
0: जी,
1: तो आपके परिवार में क्या प्रतिक्रिया रही जब आपने खेलों के प्रति अपनी रुचि बताई?
0: जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आम तौर पे घरों में यही होता है कि पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए, और खेल ठीक है अपनी जगह है बट पढ़ाई करियर के लिए जरूरी है। बट मेरे घर पे ऐसा था, मेरे पिताजी को हमेशा से था कि मैं जितना हो सकता है उतना खेलूं, वो उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका। मैंने जब उनको पहली बार कहा था कि सर पापा मुझे फुटबॉल खेलना है, तो वैसे थे कि ठीक है अगर तुझे इसमें करियर बनाना है तो फिर इसी तरह इसमें प्रैक्टिस करियो कि तू बहुत आगे जाए। उनको मेरी पढ़ाई से सच कोई परेशानी नहीं थी कि मैं थोड़ी बहुत कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, वैसे थे कि बस पढ़ाई भी जरूरी है बट अगर तुझे खेलना है तो तू खेल की तरफ पूरा पूरा दिन अपना वहीं लगा।
1: अच्छा, आप खेलों के अलावा पढ़ाई को कितना वक्त दे पाते हैं?
0: पढ़ाई को उस समय के स्कूल के टाइम पे तो बहुत कम टाइम दिया जाता था। तब तो हमारा ऐसा होता था कि जितना खेलने को मिल जाए उतना खेल सकते हैं, दिन के 8-8 घंटे हम लोग लगातार खेलते रहते थे।
1: स्कूल वालों का भी सपोर्ट रहता होगा?
0: बहुत सपोर्ट होता था स्कूल का, सर ने ही स्कूल में बात करके स्कूल से पहले हमें प्रैक्टिस कराते थे, स्कूल के बाद प्रैक्टिस कराते थे, फिर शाम को ग्राउंड पे प्रैक्टिस होती थी, तो एक दिन में हम 3 बार प्रैक्टिस करते थे। तो वो स्कूल का भी सपोर्ट था, सर का भी सपोर्ट था, और घर वालों को था, घर वालों का सपोर्ट भी था, इसीलिए वो हम 8-8 घंटे तक प्रैक्टिस कर पाते थे।
1: हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब आपने खेला तो उसके बारे में कुछ बताएं, और उसके बाद फिर अगले जो कॉम्पिटिशन था वो उसके बारे में भी हमें बताएं।
0: डिस्ट्रिक्ट लेवल जब हम लोगों ने पहली बार खेला तो हम लोग अच्छा खेले थे, बहुत अच्छा खेले थे, सर ने जो प्रैक्टिस कराई थी हम उसके हिसाब से ही खेले थे, बट फिर भी क्योंकि हम पहली बार वो उस लेवल पर खेल रहे थे तो हमें वो चीज वैसे नहीं खेल पाए जैसी जरूरत थी। वहां पे हमने उस दिन वहां जो हम पहला मैच हारे थे हमने उससे बहुत सारी सीख मिली, हमें ये चीज समझ में आई कि हमें अगले मैच में जब हम अगली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल या किसी और लेवल पे खेलने जाएंगे तो हमें क्या नहीं करना है। और उस मैच के बाद सर ने भी हमें उसी तरीके से प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करवाई ताकि हम अगले मैच में अच्छा प्रदर्शन कर पाए और अच्छे से खेल के और जीत पाए वो मैच।
1: अच्छा, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने स्टेट लेवल पे खेला और उसके बाद नेशनल लेवल पे?
0: जी,
1: इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
0: जी, डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि स्कूल्स की टीम्स आती हैं, वो सब एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पीट करती है, टॉप की जो 3-4 टीम्स होती हैं उनमें से बच्चों को सिलेक्शन करके उनको एक कैंप में भेजा जाता है 10-15 दिन के, वहां पर उन बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है और देखा जाता है कि कौन से बच्चे हैं, कौन से 18 से 20 बच्चे हैं जो अच्छे से मन लगा के सारा सब कुछ कर रहे हैं और जिनमें है कि वो आगे जाना चाहते हैं, उन बच्चों का वहां से चयन करके उनकी एक टीम बना के उनको स्टेट के लिए भेजा जाता है जहां पे वो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इस तरह से राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबकी टीम बन के एक जगह आती है जहां पे गवर्नमेंट पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराती है स्टेट का, वहां पर वो सारी टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पीट करके और फिर वहां से जो टॉप 2 से 3 टीम्स होती हैं उनमें से फिर दोबारा से 18 बच्चे निकलेंगे, 18 से पहले उनमें 50 बच्चे निकालते हैं, उनको कैंप में भेज के फिर उनको काट के 18 बच्चे करा जाता है, फिर वो 18 बच्चे 1 महीने लगातार एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं, पूरे स्टेट की टीम्स के साथ अलग अलग जगह जाके खेलते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ सेट हो पाए, फिर उन 18 प्लेयर्स की जो टीम होती है उन्हें राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए संतोष ट्रॉफी जो कि नेशनल टूर्नामेंट है सीनियर्स का उसमें भेजा जाता है।
1: संतोष ट्रॉफी के बारे में बताएं कुछ कि संतोष ट्रॉफी क्या है, किस लेवल की है और किस प्रकार से कॉम्पिटिशन्स होते हैं?
0: संतोष ट्रॉफी बेसिकली एक नेशनल लेवल टूर्नामेंट है, इसमें क्या होता है कि 5 जोन डिवाइडेड है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ ईस्ट, इन 5 जोन में 9 से 10 टीम्स होती हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करती है और वो कम्पीट करने के बाद वहां से जो टॉप 2, 1 या 2 टीम्स होती हैं उनको फाइनल इंटरजोनल खेलने के लिए भेजा जाता है। संतोष ट्रॉफी बेसिकली जो टीम संतोष ट्रॉफी जीतती है वो इंडिया में टॉप टीम्स में काउंट होती है, बिकॉज कि अगर आप नेशनल लेवल पे जीत रहे हो तो फिर उसके बाद सिर्फ आगे इंटरनेशनल बचता है, फिर वहां से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करेंगे फुटबॉल में।
1: संतोष ट्रॉफी में आपकी और आपकी टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे.
0: संतोष ट्रॉफी में हमारी टीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी बट किसी कारणवश बहुत माइनर पॉइंट्स के चलते हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए. हम एक मैच हार गए थे जो कि हमें जीतना चाहिए था. उस मैच के चलते हम लोग वो टूर्नामेंट क्वालिफाई नहीं करे और हम क्वालिफाइंग राउंड में ही बाहर हो गए थे.
1: फुटबॉल की हम बात करें तो इसमें जो पोजीशंस होती हैं वो काफी उनके बारे में बात की जाती है, तो पोजीशंस के बारे में बताएं कि फुटबॉल में कौन कौन सी पोजीशन.

0: होती हैं
1: जी। मेनली फुटबॉल में एक टीम को चार क्षेत्रों में डिवाइड करा जाता है। सबसे पहले गोलकीपर होता है जिसका काम अपने गोल को बचाना है। गोलकीपर के आगे एक डिफेंस लाइन होती है, जैसे कि एक किला होता है, तो गोल जो है वो हम लोगों के लिए किला है और उसके आगे जो हमने सेनापति खड़े कर रखे हैं वो हमारी डिफेंस लाइन है, उन्हें अपने फोर्ट को बचाना है। तो डिफेंस लाइन का काम है कि पूरे अच्छे से कीपर को परेशानी ना हो और गोल को गार्ड करके रखना है।
0: उनकी एक निश्चित सीमा होती है
1: उसके आगे डिफेंस लाइन के आगे आता है मिडफील्ड। मिडफील्ड में क्या होता है बेसिकली कि आपको पीछे से बॉल लेके, डिफेंस लाइन से बॉल लेके आपके अपने स्ट्राइकर्स जो चौथी पोजीशन है जिनका काम है कि दूसरे के गोल में घुस के गोल मार कर आना है, उनको जो बॉल सप्लाई करनी है वो मिडफील्ड का काम है। मिडफील्ड बेसिकली एक तरीके से इंटरमीडिएटर है कि वो डिफेंस से बॉल लेगा, कीपर से बॉल लेगा और आगे स्ट्राइकर को पहुंचाएगा।
0: आप किस पोजीशन पे खेलते हैं?
1: जी मैं मिडफील्ड पे खेलता हूँ सर।
0: अच्छा, ऐसा होता है कि कोई खिलाड़ी आपस में चेंज भी हो जाते हैं कि जो मिडफील्ड का खिलाड़ी है वो आगे बहुत गोलकीपर भी बन सकता है?
1: हाँ, ये बहुत नॉर्मल है कि हर प्लेयर को इस तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती है कि वो किसी भी पोजीशन पे खेल ले, बट ये होता है कि पोजीशन ऐसे डिसाइड होती है कि जो उस पोजीशन पे ज्यादा अच्छा करता है उसको वो पोजीशन दे दी जाती है, बट ओवरऑल सबका काम सेम ही है, सबको एक तरीके से बॉल को कंट्रोल ही करना है और कोई भी पोजीशन चेंज कर सकते हो। ये बहुत ही आम बात है फुटबॉल में कि कीपर आगे खेल रहा है और आगे वाले प्लेयर कीपर की पोजीशन पे डिफेंस लाइन पे खेल रहा है, बिकॉज उन सबकी प्रैक्टिस ही ऐसी होती है कि जहां जरूरत पड़ती है वो लोग वहां जाके फिट हो जाते हैं।
0: अलवर की हम बात करें तो फुटबॉल के खिलाड़ी को प्रैक्टिस करने का कहां मौका मिलता है?
1: अलवर में सर वैसे तो दो तीन अच्छी जगह है जहां पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जहां पर मैंने हमेशा से करी है वो है आरआर कॉलेज। वहां पे आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, सारे इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं आपको वहां पे, स्पेशली एक प्रॉपर कोच मिलता है जो आपको वहां पे ट्रेनिंग कराएंगे, सब कुछ सारी टीमों से आपके मैच करवाएंगे, आपको उस तरीके से उस एनवायरमेंट में ढाल देंगे कि आप आगे जाके एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर बन पाओ।
0: अच्छा, जो मैच की प्रैक्टिस आप करते हैं तो ये रोजाना होती है या कभी कभार होती है?
1: नहीं, मैच की प्रैक्टिस हफ्ते में कहा जाए तो एक बार ही कराई जाती है, बट उस एक बार उस मैच में खेलने के लिए जो आपको चीजें सीखनी पड़ती हैं वो पूरे हफ्ते वहां पे कराई जाती है।
0: हमारे बहुत से युवा साथी इस समय हमारी बात को सुन रहे होंगे और वो चाहते हैं वो भी फुटबॉल को खेलना, फुटबॉल में उनका जो इंटरेस्ट होगा तो वो भी अपना भाग्य आजमाना चाहते होंगे, तो एक फुटबॉल के खिलाड़ी में किस तरह की स्किल्स होना बहुत जरूरी है, आपको क्या लगता है, क्या मानते हैं आप?
1: जी सबसे पहले तो सर माइंडसेट बहुत जरूरी है कि आपको हमेशा हर मोमेंट हर स्टेप पे आपको अपने माइंडसेट को पुश करना पड़ेगा, और फिजिकली जो देखा जाए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फुटबॉल की वो है कि आप में एंड्योरेंस काफी ज्यादा होना चाहिए, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल, एजिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा गेम नहीं है जिसमें आप खड़े खड़े खेल सकते हैं, इसमें आपको कभी भागना भी पड़ेगा, भागते हुए सडन टर्न भी लेना पड़ेगा, तो आपकी बॉडी की कंडीशनिंग जो है, आपकी बॉडी में जो स्ट्रेंथ है वो सब अप टू द बार होनी चाहिए ताकि आप वो सारे 90 मिनट के गेम के लिए अगर आपको कोई चीज करनी है 90 मिनट तक लगातार तो आपको वो स्ट्रेंथ भी चाहिए वो सब करने के लिए।
0: अच्छा, फुटबॉल का खेल ऐसा है जिसमें कि सभी खिलाड़ी सक्रिय रहते हैं, सब दौड़ते रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं,
1: जी सर,
0: तो ऐसे में स्टेमिना की बहुत जरूरत होती है,
1: बहुत ज्यादा सर।
0: तो स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, कैसे ये स्टेमिना इतना आ पाता है?
1: सर दो तरीके से होता है, एक विद बॉल होता है, क्योंकि स्पेसिफिकली अपन फुटबॉल की बात कर रहे हैं, तो विद बॉल और विदाउट बॉल होता है। विदाउट बॉल हमें सर किलोमीटर्स में रनिंग करनी पड़ती है, कभी कभी तीन तीन चार चार किलोमीटर तक हम रनिंग करते हैं, फिर उसके बाद फुटबॉल खेलते हैं, तो वो जब धीरे धीरे हम लगातार उस तरीके उस पैटर्न में खेलते रहते हैं कि पहले भाग रहे हैं फिर फुटबॉल के साथ भाग रहे हैं, और फिर उसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ एंड्योरेंस की ट्रेनिंग होगी, एंड्योरेंस के साथ आपकी स्ट्रेंथ की भी आ जाएगी, एजिलिटी की भी आ जाएगी, सारी मिलजुल के आपका स्टैमिना धीरे धीरे धीरे धीरे वो बिल्डअप हो जाता है।
0: फुटबॉल में अपना भविष्य क्या देखते हैं आप, क्या बनना चाहेंगे आगे, क्या आपके लक्ष्य हैं?
1: सर जब मैंने शुरू किया था तब तो मेरे को एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने का लक्ष्य था, बट बिकॉज अब वो मैंने बीच में छोड़ दिया था किसी कारणवश, तो अब मैं प्लेयर की तरीके से नहीं, अब मैं इसको कोच के तरीके से देखता हूं। मैंने मेरे सर को हमेशा बच्चों को सिखाते हुए देखा है, तो अब मैं चाहता हूं कि मैं भी सर की तरह अपने एक एकेडमी में बच्चों को सिखाऊं, अपने अंडर बच्चों को ट्रेन करूं, ताकि जिस तरीके से सर ने मुझे एक रास्ता दिया था कि मैं फुटबॉल में इतना आगे आ पाया, वैसे मैं औरों को वो रास्ता प्रोवाइड कर पाऊं कि वो भी आगे तक संतोष ट्रॉफी तक इंडिया को रिप्रेजेंट कर ले, वहां तक खेलें। इसके लिए सर मैंने डी लाइसेंस कर रखा है। डी लाइसेंस बेसिकली एक स्टेप होता है, इनिशियल स्टेप है जो आपको कोच बनने के लिए चाहिए होता है, जहाँ पे आप बहुत कम उम्र के बच्चों को सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे इसमें सी लाइसेंस, बी लाइसेंस, ए लाइसेंस होता है। इसके अलावा सर एक बीपीएड होता है, बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, वहां पर आपको

0: प्रॉपर ट्रेन करा जाता है कि आप स्कूल में जो पीटीआईज होते हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स के टीचर होते हैं, उनके तरीके से कि वो आप कैसे बन सकते हैं।
1: जी, अच्छा, एज ए फुटबॉलर आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि फुटबॉल, कोई भी स्पोर्ट्स या फिर फुटबॉल, मेरे लिए स्पेशली फुटबॉल एक सिर्फ गेम नहीं रहा। जब मैं उसको, वो खेलना ही खेलना है, चाहे महीने में एक बार हो चाहे दिन में एक बार हो, बट वो जरूरी हो जाता है। तो स्पोर्ट्स को सिर्फ इस तरीके से ना देखा जाए कि उससे आपको कुछ चाहिए। आप शुरू इसलिए करिए क्योंकि आपको मन है, आपका इंटरेस्ट है वो, फिर जब आप अपने इंटरेस्ट पे काम करेंगे तो धीरे धीरे आप रिजल्ट अपने आप उससे आपको मिलने लग जाएगा, आपको उसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा।
1: तो मयंक, आपके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो चाहें वो आप प्राप्त करें, वो आपको मिले। फिलहाल आप स्टूडियो में आए और आपने हमसे जो बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया सर आपका हमें मौका देने के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे फुटबॉल खिलाड़ी मयंक खंडेलवाल से शिव कुमार शर्मा की बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र अलवर का अंशदान था। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं बॉक्सिंग कोच व प्लेयर श्याम सिंह कच्छावा से गोपाल लाखन की गई बातचीत।
3: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं बॉक्सिंग कोच और प्लेयर श्याम सिंह कच्छावा से। श्याम सिंह कच्छावा जी बॉक्सिंग के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इन्होंने रेफरी और जज के दायित्व भी निभाए हैं अनेक टूर्नामेंटों में। स्टेट के चैंपियन हैं और नेशनल में भी आपने कई बार अपने खेल के दम से लोगों को हैरत में डाल दिया है। श्याम सिंह जी नमस्कार, स्वागत है।
4: नमस्कार सर।
3: श्याम सिंह जी, बॉक्सिंग के बारे में जानना चाहेंगे, इस खेल में आना कैसे हुआ?
4: इस खेल में सर मैं पहले फुटबॉल खेलता था और मेरे पड़ोस में प्रवीण जी मेरे जो फ्रेंड है वो रहते थे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था नेशनल में
3: बॉक्सिंग में
4: और उनकी फोटो आई थी पेपर में।
3: अच्छा,
4: तो उससे मैं काफी प्रभावित हुआ और मैंने भी सोचा कि मुझे भी बॉक्सिंग खेलनी है और मेरे को भी एक बार पेपर में मेरी फोटो जरूर आनी चाहिए।
3: अच्छा
4: जी सर।
3: जब ये सपना आपने देखा था तब तो आप छोटे ही होंगे?
4: मैं छोटा ही था।
3: हाँ, बिल्कुल। फिर आप प्रवीण जी से मिलने गए?
4: प्रवीण जी बिल्कुल पड़ोस में ही रहते थे मेरे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप भी बॉक्सिंग ट्राई करो, तो मैंने कहा बिल्कुल, मेरे को भी फोटो लानी है पेपर में, और मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन करी और फिर धीरे धीरे करते करते मैंने 5 नेशनल खेले मैंने
3: जी,
4: और 5ों में मेरा मेडल लगा। फर्स्ट जो नेशनल था मेरा अम्बाला कैंट में, उसमें मेरा सिल्वर लगा था। उसके बाद मेरा सब जूनियर के अंदर ही मेरा गोल्ड लगा। फिर मैं जूनियर कैटेगरी में आया, जूनियर में मैंने दो चैंपियनशिप खेली और दोनों में मैंने गोल्ड मारे। फिर उसके बाद में मैं सीनियर में एंट्री करी, मैंने सीनियर के अंदर मेरा सिल्वर मेडल लगा और उसके बाद से फिर मैं बॉक्सिंग ट्रेनिंग देने लग गया।
3: स्टार्ट कब किया था आपने?
4: स्टार्ट मैंने 89 में कर दिया था,
3: 89 से आपने जब खेलना शुरू किया था बॉक्सिंग और वो सपना देखा था अखबार में, मेरी
4: बिल्कुल मेरी, फिर उसके बाद इतनी फोटोएं आई कि मतलब मेरे को लगा हाँ वास्तव में बहुत जो सोचा था सपना पूरा हुआ।
3: तो ये जो फोटो छपने का सपना था कि अखबार में मेरा फोटो छप जाए, और जब पहला मैच खेलने उतरे वो मैच याद है आपको?
4: बिल्कुल वो मैच मुझे याद है, जब मैं पहली बार उतरा था फाइट के लिए, मेरे कोच साहब बाहर खड़े हुए थे और मैंने जब फाइट खेली तो मैं जब जीता वो, तो कोच साहब ने रिंग पे से मुझे कंधे पे उतारा और वो मोमेंट मुझे आज तक याद है और मैं उसको बार बार याद करता रहता हूँ। मेरे दोस्तों से मिलता हूँ तो उसको शेयर करता हूँ, बड़ा खुश होते हैं सब, क्योंकि कोच साहब हमारे जो थे वो मिलिट्री से रिटायर हुए हुए थे और सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रैक्टिस करवाते थे वो, और पूरे इंडिया में उनको मानते थे क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल के कोच
3: जी जी
4: और प्लेयर रह चुके।
3: श्याम सिंह जी, जब पहली बार रिंग में उतरे नेचुरली थोड़ा डर लगा होगा, फिर घर वालों ने कहा होगा कि तुम बॉक्सिंग मत चुनो यार, कुछ और गेम खेल लो?
4: घर वालों का तो था ही कि भाई लग जाएगी, चोट आ जाएगी और तुम इसको मत खेलो। जो रिलेटिव भी आते थे वो भी मना करते थे किस गेम में डाल दिया, लेकिन एक मेरा मतलब जो सपना था उसको मेरे पिताजी बोले नहीं खेलने दो इसको, करने दो, आगे बढ़ेगा। और मेरा आर्मी में भी सिलेक्शन हो गया था
3: जी।
4: गुजरात पुलिस में भी मैंने 8 महीने जॉब किया, उड़न दस्ते में लगा दिया था उन्होंने मेरे को, लेकिन वो गेम से दूर हो गया था मैं। तो फिर मैंने अपने जो ऑफिसर थे उनसे मिलके मैंने कहा मेरे को गेम खेलना है तो मैं रिजाइन दूंगा। तो बोले बेटा देख लो आप, मैंने कहा नहीं मेरे को गेम खेलना है, आपने तो गेम से दूर कर दिया। फिर वहां रिजाइन देके मैं यहाँ पे आया, फिर मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद में नेवी में भी हुआ मेरा सिलेक्शन, लेकिन मैंने गेम की वजह से वहां भी ज्वाइन नहीं किया,
3: यानी खेल को सर्वोपरि रखा।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: अच्छा, जब आप खेलने उतरे बॉक्सिंग के रिंग में और लगातार मेडल जीतते गए
4: जी,
3: फिर घर वालों का थोड़ा रवैया बदला?
4: बिल्कुल बदला, घर वालों का रवैया बदला। मेरे जो रिलेटिव्स थे वो मेरे से मिलने आते थे जब मेरी पेपर में फोटो आती थी, मेरे पिताजी को काफी सम्मान

0: सम्मान मिला, मुझे सम्मान मिला
1: जी,
0: और आज तक मिलता जा रहा है सम्मान।
1: तो और ये सब खेल की बदौलत,
0: ये सब खेल की बदौलत।
1: अच्छा, बॉक्सिंग का खेल काफी खतरनाक माना जाता है और ऐसा लगता है कि यूं तो हर एक खेल में चोट की संभावना रहती है लेकिन बॉक्सिंग में थोड़ी ज्यादा है, कितने चैलेंज हैं इसमें?
0: सर, इसमें लगता है सबको कि ये बहुत खतरनाक गेम है। वैसे देखा जाए तो ये गेम ओनली 40% जो पावर यूज होती है, क्योंकि ग्लव्स आजकल बहुत अच्छे आ गए हैं, उनका फॉर्म काफी अच्छा है, फिर हेड गार्ड वगैरह लगाया जाता है बॉक्सर जो फाइट लड़ता है, प्लस टीथ गार्ड होता है, गमशील जिसको बोलते हैं दांतों के लिए, होठ वगैरह नहीं कटते उससे, और बीच में जो रेफरी होता है, क्योंकि मैं भी रेफरी की ट्रेनिंग ली हुई है मैंने, तो हमको ये कहा जाता है कि जो बॉक्सर जो फाइट कर रहे हैं तो इंजर्ड नहीं हो, उसका पूरा पूरा ध्यान रखें, इंजर्ड होने से पहले ही काउंटिंग वगैरह दें, और अगर ऐसा लग रहा है कि अगला बॉक्सर हेवी पड़ रहा है तो उस फाइट को वहीं स्टॉप करके, और आरएसी रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट, मतलब रेफरी ही डिसीजन दे देगा कि ब्लू कॉर्नर जीता है या रेड कॉर्नर जीता है।
1: अच्छा, तो ये सिक्योरिटी के लिए जितने सारे सामान है इसमें खेल के इक्विपमेंट्स, जैसे आपने कहा ग्लव्स लगाए जाते हैं,
0: हेड गार्ड है, टीथ गार्ड है,
1: कौन कौन से ऐसे नाम लेना चाहेंगे जो जरूरी है और बहुत उसके बिना हम खेल नहीं?
0: बिल्कुल, इसमें हेड गार्ड के बिना आप नहीं खेल सकते, रूल है ये। आप गमशील्ड जो टीथ गार्ड होता है उसके बिना आप नहीं खेल सकते हैं, एल गार्ड है उसके बिना नहीं खेल सकते हैं, अंदर क्रैप बैंडेज होती है आपकी ग्लव्स के अंदर, पहनने से पहले बैंडेज पहनी जाती है जिससे अपने रिस्ट वगैरह में कोई इंजर्ड नहीं हो। तो सेफ गेम है मेरे हिसाब से, आज तक मैं कभी इंजर्ड नहीं हुआ। और खेलने से पहले खिलाड़ी को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पूरा वार्म अप हो, अच्छी तरह वार्म अप हो करके फिर बाद में वो अपनी प्रैक्टिस करे, किट बैक करे, पैड करे या टचिंग करे, फाइट करे, क्योंकि उससे पहले अगर बिना वार्म अप हुए अगर हम उतर जाते हैं तो इंजर्ड होने के चांसेस पूरे पूरे चांसेस रहते हैं।
1: प्रैक्टिस कितनी मांगता है बॉक्सिंग?
0: प्रैक्टिस
1: गेम चाहता है कि भाई प्रैक्टिस करके आए, अभ्यास करें, उसके बाद में हम फाइनल मैच खेलने।
0: जी जी,
1: तो प्रैक्टिस कितनी इम्पोर्टेंट है?
0: प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस करता था 3 घंटे मॉर्निंग में सुबह करता था प्रैक्टिस, और 3 घंटे इवनिंग में करता था, और इसमें डाइट का बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट रहता है, रोल रहता है, तो डाइट का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है, मेन चीज वो भी है गेम्स के साथ।
1: जो इस खिलाड़ी बॉक्सिंग में आना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सी कैटेगरी है, किस तरह से आ सकता है? वेट कैटेगरी होती है या एज?
0: इसमें वेट कैटेगरीज भी होती है और एज कैटेगरीज भी होती है, इसको अलग अलग उसमें भागों में बांटा गया है, जैसे सब जूनियर कैटेगरी होती है, फिर उसके बाद में जूनियर होती है, फिर यूथ होती है और फिर सीनियर होती है। इनमें 12 से 13 साल के जो है वो सब जूनियर में आते हैं, और 13-14 के जो है वो अपने उसमें आते हैं जूनियर में, और 16 से 17 आते हैं आपके यूथ में, और फिर जो 18 से ऊपर के हैं वो सीनियर में आते हैं।
1: यानी 12 साल की आयु का बच्चा इस गेम में आने के लिए तैयार हो सकता?
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल हो सकता
1: और
0: है।
1: वहां से शुरुआत,
0: वहां से शुरुआत हो।
1: कहीं ऐसा लगता है कि यार मैं गलत फंस गया इस गेम में, चेंज कर लूं बीच में, कभी ऐसा?
0: नहीं, वो अगर अच्छा बॉक्सर है और पूरा सपोर्ट मिल रहा है उसको और वो फाइट जीत रहा है, हार जीत तो हर गेम में लगी रहती है, तो हार से तो यही सीख मिलती है कि हम और अच्छी प्रैक्टिस करें, कुछ कमी रह गई हमें तो हमको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो वो तो एक मोटिवेशन मिलता है उससे अपन को हारने से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं लगा मेरे को कि मैंने गलत गेम चुन लिया या मैं गलत गेम में आ गया हूं, और मैंने आज तक मतलब मैं बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ हूं और मैं अंतिम श्वास तक बॉक्सिंग से जुड़ा रहूंगा,
1: आजीवन रहेंगे,
0: आजीवन रहूंगा।
1: श्याम सिंह जी भी आपने कहा था कि आप रेफरी के दायित्व भी निभाते हैं
0: जी,
1: और जजमेंट भी करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो एक प्लेयर ही रेफरी बन सकता है या कुछ और जो दूसरा खिलाड़ी?
0: एक प्लेयर ही रेफरी बन सकता है, अच्छा रेफरी और अच्छा जज बन सकता है, क्योंकि उसको सारे नियम कानून कायदे सब पता रहते हैं, क्योंकि वो खेलता भी है। उसके बाद में आपकी रेफरी और जज की एक ट्रेनिंग होती है, जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको एसोसिएशन से, उसके बाद ही आप मतलब रिंग में रेफरी और जज बन सकते हैं आप।
1: खिलाड़ी के तौर पे अलग तो चैलेंज होता है, हमको वहां जीतने की रहती है कि मैं जीतूं, और रेफरी के तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ता है, वहां अलग चैलेंज है। तो किस तरह से आप अपने दायित्व को निभाते हैं जब आप रेफरी होते हैं? क्योंकि खिलाड़ी भी आपके भीतर है और फिर रेफरी का रोल निभाना है।
0: उसमें ये होता है कि जब मैं रेफरी बनता हूं तो हमको ये बताया जाता है कि एक तो कोई फाउल नहीं खेले, अगर फाउल खेल रहा है तो उसी टाइम उसको स्टॉप करके वार्निंग देनी है कि आपकी फर्स्ट वार्निंग, आपने ये फाउल मारा है, ओपन हैंड मारा है या आपने हेड डाउन किया है ना, या आप उसको क्लिंचिंग कर रहे हैं, तो उनको रोक करके वार्निंग दी जाती है। थर्ड वार्निंग में फिर एक्शन लिया जाता है उस पे कि अगर अबकी बार आपने कुछ किया तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे आप।
1: कभी कभी खिलाड़ी खेलते खेलते एग्रेसिव हो जाता है और वो रेफरी पर ही पंच मार देता है, ऐसा हुआ है या होता है?
0: नहीं, ऐसा वैसे मैंने देखा है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ज्यादा होता है, अमेचर बॉक्सिंग जो है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि

0: रूल रेगुलेशन सब जानते हैं, ऐसा करने पे आप रेस्टिकेट हो सकते हैं 2-3 साल के लिए। अच्छा। इसलिए कभी भी बॉक्सर ऐसी गलती नहीं करते हैं।
1: जज बनने के अपने अलग चैलेंज हैं, जब आप बाहर रिंग के बाहर बैठते हैं, रेफरी होते हैं तब तो रिंग के
0: अंदर होते हैं,
1: और जब जज होते हैं तो रिंग के बाहर
0: होते हैं।
1: वहां के चैलेंज किस तरह के?
0: वहां के ऐसे होते हैं कि हमको ये बताया जाता है कि मतलब पूरा ध्यान दोनों बॉक्सरों पे रहता है, कौन कितने पंचेज मार रहा है, नकल पार्ट से बॉडी पार्ट पे कितने पंचेज लगे हैं उन्हीं को हमको पॉइंट देने। उनके अलावा जो गार्ड वगैरह होते हैं जो अपने हैंड से जो रोकते हैं उन पे अगर लगते हैं तो उनको काउंट नहीं किया जाता है। और बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है ये एक तरह का, कि रेफ जज जो बनना है, कहीं भी किसी भी बॉक्सर के साथ कोई गलती नहीं हो जाए, कोई मतलब हमारी वजह से कोई उसको नुकसान नहीं हो जाए, जीती हुई फाइट कहीं हार नहीं जाए।
1: हाँ, यानी अच्छे तरीके से सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना है।
0: बिल्कुल
1: सर, चौकन्नी रखनी है,
0: चौकन्नी रखनी पड़ती है, बिल्कुल एकदम।
1: श्याम सिंह जी, कई बार जो खिलाड़ी आपस में जब खेलते हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं
0: जी,
1: तो सिर्फ फेस पर आपको पंच मारना है या कई बार दूसरी जगह भी आप मार सकते हैं बॉडी में?
0: नहीं, इसका एक टारगेट एरिया होता है अपना, ऊपर हेड से लेकर के बेल्ट एरिया तक।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल फ्रंट में, बस उसी एरिया में जो पंच है वो अलाउड रहते हैं। उसके अलावा अगर कहीं पंच मार देता है बॉक्सर तो वो फाउल में आता है,
1: यानी पेट तक मार सकते।
0: हाँ, बेल्ट तक, बेल्ट के ऊपर,
1: बेल्ट के ऊपर तो कमर से ऊपर ऊपर, फेस,
0: हाँ, फेस हेड से लेकर के और नीचे बेल्ट के एरिया तक, बेल्ट से नीचे फाउल है और ऊपर हेड पे भी फाउल है और हेड के पीछे भी फाउल है।
1: अच्छा,
0: यस।
1: तो ये आपको काफी सोच समझकर खेलना है, और जब आप खेल रहे होते हैं बॉक्सिंग का तो इन चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा।
0: जी,
1: आप नए बच्चों को सिखाते भी हैं, कोचिंग करते हैं बॉक्सिंग की, किस तरह के चैलेंज? आपके कई सारे रूप हैं दरअसल, आप एक खिलाड़ी हैं, जज हैं, रेफरी हैं और भी न जाने क्या क्या है, अब आप कोच के रोल में भी हैं
0: जी।
1: तो कोचिंग करते समय आप खिलाड़ियों को किस तरह सेलेक्ट करते हैं, क्या योग्यताएं देखते हैं उनमें कि ये बच्चा बॉक्सिंग में आगे जा सकता है?
0: बिल्कुल, अभी काफी अच्छा मतलब रेस्पॉन्स मिला है मेरे को बॉक्सिंग में। 5 साल के बच्चे भी मेरे पास बॉक्सिंग सीखने आ रहे हैं, तो 5 साल से ही एंट्री दे देता हूं मैं बच्चों को। तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी काफी मतलब वो रहते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाए और मतलब सीखे और मतलब इसको अच्छे ट्रेनिंग मिले हमको। तो काफी बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, सब काफी एज के आ रहे हैं, गर्ल्स भी आ रही है मेरे पास। तो उनको शुरू से जो ट्रेनिंग दी जाती है, हम सबसे पहले उनको खड़े होने की पोजीशन बताते हैं, फिर उसके बाद में गार्ड टारगेट एरिया बताते हैं, फिर पंच मारना उनको सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे फुटवर्क पे लेके आते हैं उनको, फुटवर्क के बारे में सिखाते हैं, फिर डिफेंस सिखाते हैं, फिर अटैक सिखाते हैं, फिर उसके बाद में हम उनको रिंग का मूवमेंट सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे पैड वगैरह, किट बैग वगैरह लेके आते हैं। और इस तरह से हम हमारा शेड्यूल बनाते हैं, बच्चे का स्टेमिना धीरे धीरे धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं
1: जी।
0: तो काफी कुछ मतलब बच्चा इससे सीखता है।
1: श्याम सिंह जी, हर एक गेम की एक अलग डाइट होती है, और डाइट प्लान के बिना हम शायद अच्छा ग्रो नहीं कर सकते, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। बॉक्सिंग के गेम में खिलाड़ी के लिए कुछ अलग डाइट प्लान होता है या नॉर्मल डाइट?
0: नहीं, नॉर्मल डाइट प्लान होता है, वही जैसे आपका एग हो गया, दूध हो गया, चने हो गए,
1: प्रोटीन का,
0: प्रोटीन, हाँ, ये चीजें रहती है नॉर्मल। बाकी और बस ये ऑयली चीजें जो है, बेकरी वाले जो फूड्स वगैरह है, उसके लिए हम अलाउ नहीं करते,
1: अवॉइड करते हैं। जब बच्चे को लेकर आपके पास में आते हैं माता पिता, तो उनकी कुछ अलग तरह की क्वेरीज होती है
0: जी,
1: और वो चाहते होंगे कि हम आज आप श्याम सिंह जी आपको अपना बच्चा दे रहे हैं और आप 2 साल में इसको चैंपियन बना देना।
0: बिल्कुल,
1: किस तरह के सवालात होते हैं जब, क्योंकि हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी मेडल ले।
0: बिल्कुल, कई बच्चे ऐसे आते हैं आजकल जो आ रहे हैं मेरे पास, फैटी आते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मोबाइल से खेलते रहते हैं या टीवी पे कार्टून देखते रहते हैं, बाहर निकलने वाला तो सीन है ही नहीं आजकल। तो पेरेंट्स आके बोलते हैं कि एक तो इसका वजन थोड़ा सा आपको कम करवाना है, और मतलब बच्चा ऐसा बन जाए कि हम इसको आगे तक खिलाना चाहते हैं, ओलंपिक खेल सकता है कि हमारा बच्चा, यहाँ तक बोलते हैं पेरेंट्स।
1: अच्छा।
0: तो फिर हम उनको गाइड करते हैं कि देखेंगे हम, आप बच्चे को धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, और मैंने कहा ओलंपिक तक के भी चांस है क्योंकि फेडरेशन से जुड़े हुए हैं हम
1: जी।
0: तो मैंने कहा आगे तक जा सकता है बच्चा। अभी जैसे मेरे 3 बच्चे अभी साई में है, जोधपुर है, और इंटरनेशनल भी मेरा एक बच्चा खेला हुआ है
1: जी,
0: और बच्चे 2-3 बच्चे जॉब भी लगे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी
1: जी।
0: तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स है बच्चों का, और अभी एक बच्ची जाएगी नेशनल, अभी एक बच्चा स्टेट के लिए तैयारी कर रहा है। तो काफी बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं।
1: अच्छा, गर्ल्स एंड बॉयज का जो सीन है स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग में
0: जी,
1: वो उसमें लड़कियां ज्यादा आ रही हैं अभी या लड़की?
0: हाँ, लड़कियों का रेशियो ज्यादा है मेरे पास।
1: लड़कियों के लिए प्लस पॉइंट क्या है बॉक्सिंग सीख?
0: लड़कियों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो गर्ल्स को आगे भेजते हैं, वो भी बॉक्सिंग जैसे गेम में
1: जी।
0: तो इसमें जो कंपटीशन

0: जो होता है वो बॉयज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम रहता है,
1: जी
0: तो क्योंकि जो गर्ल्स हैं उनको पेरेंट्स सोचते हैं चोट आ जाएगी, चेहरा खराब हो जाएगा, तो हम नहीं भेजें। और कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए हमारे बच्चे आगे बढ़े, और वो आगे बढ़ जाती है बच्चियां, जैसे कई पुलिस में लगी हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रही हैं, जैसे आपने मैरी कॉम, लवलीना,
1: जी जी
0: स्वीटी,
1: बड़े नाम
0: हाँ, काफी अच्छी बॉक्सर्स हैं। और इन्होंने,
1: अब आपने ये नाम लिया है तो मैं आपका रोल मॉडल भी पूछ लूं, बॉक्सिंग में आपके रोल मॉडल आदर्श कौन है?
0: मेरे आदर्श मेरे कोच साहब ही हैं,
1: अच्छा,
0: मूल सिंह जी शेखावत
1: जी।
0: उन्होंने जब मतलब बॉक्सिंग में शुरुआत करी थी तो उनका एक ये था कि उनका एक राइट पंच अगर किसी बॉक्सर के लग जाता था तो उनको ये इतना कॉन्फिडेंस था कि फाइट खत्म, और वो ग्लव्स खोल के साइड में चले जाते थे। उधर उसकी काउंटिंग होती रहती थी, 8 तक काउंटिंग के बाद में 9-10 के बाद में गेम खत्म हो जाता है, वो गेम खत्म ही होता था, तो इतना कॉन्फिडेंस था। तो मेरे को मेरे रोल मॉडल वही है कोच साहब।
1: क्या कहना चाहेंगे उन नए खिलाड़ियों के लिए जो बॉक्सिंग में आना चाहते हैं, इसको एक कैरियर के तौर पे अपनाना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, बॉक्सिंग एक बहुत अच्छा गेम है, सेफ गेम है, और मैं आज तक इंजर्ड नहीं हुआ हूं, तो इंजर्ड की तो कोई परवाह ही नहीं करें बिल्कुल भी। मेरी वाइफ भी बॉक्सर है, मेरी डॉटर भी बॉक्सर है, तो बॉक्सिंग सेफ गेम है, सब ज्वाइन करें, और फिटनेस के लिए भी काफी अच्छा है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी काफी अच्छा गेम है, और आगे हम बढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल तक हम जा सकते हैं इसमें।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सिंह जी कछावा साहब,
0: धन्यवाद।
1: आज बॉक्सिंग के बारे में इतनी अच्छी बातें की आपने और हमारे तमाम सुनने वालों को बताया कि वास्तव में बॉक्सिंग एक बहुत ही अच्छा गेम है और हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो श्रोताओं,

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोता, अभी आप सुन रहे थे खेल जगत कार्यक्रम, जिसे हम जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। श्रोताओं, सुने फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म क्रांति के इस गीत के साथ। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की युगल आवाज़, संतोष आनंद के बोल और लक्ष्मीकांत पेरेलाल का संगीत।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

गुलजार के बोल आर डी बर्मन का संगीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाजों में। अभी आप सुन रहे थे फिल्म आंधी का ये दो गाना। किशोर कुमार की आवाज में आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म नजराना फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: आपकी कसम फिल्म के किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ये फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इसे समय रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली के अंदर से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान

अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि

बजते बजते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई। इस छोटी सी बात पे मुझसे राधा रानी रूठ गई।